और गोरा मैया कहती है शिव से कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही तेरी सती हूँ, जरा मुझको तो जान, एक बार आंखें खोल भोले और अपनी गोरा को पहचान।

हम आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026 सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: हम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से और सुनेंगे सबसे पहले बंधनवार चिंतन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे।

0: राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।
4: वंदनवार।

आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, हम महानता के करीब तब पहुंचते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

श्रोताओ, अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 199।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता में सुनिएगा श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। सुबह और रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। इसी कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। 10 पिटारा में सुनिएगा उजाले उनकी यादों के निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां भाग आप सुन सकेंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। दिन में 11 होगा कार्यक्रम रंग तरंग। 12 सुनिएगा यादों की महफिल।

दिन में 1 बजे सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी, 2:30 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सखी सहेली।

शाम 4 बजे सेहत नामा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आज डॉक्टर लीजा बैनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुनेंगे। विषय है थायराइड की बीमारी और उपचार। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन।

शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर आप सुनेंगे स्मृतियों के स्वर, अधिशासी लवलेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आज आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक यादों की परछाइयां, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आज इस नाटक का पहला भाग आप सुन सकेंगे। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

जो श्री राम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है।

0: के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस श्रृंखला की कड़ी में, जो कर्नाटक रागों के बारे में कुछ रोचक विषयों पर आधारित है, मैं ऐसे दो रागों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी जो मंगलम गाने में प्रायः उपयुक्त होते हैं। ये दो राग हैं सौराष्ट्रम और राग मध्यमावती। मंगलम एक ऐसा बंदिश या कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है। मंगलम में प्रायः प्रार्थना होती है कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, और इस मंगलम को पेश करने की विधि ज़्यादातर दो होते हैं। एक तो हुआ राग सौराष्ट्रम में त्यागराजा द्वारा रचित मंगलम कीर्तना गाने का, जिसके शब्द हैं पवमान सुतुडु बट्टु पादार विंद मुलकु नी नाम रूप मुलकु नित्य जय मंगलम। और दूसरी प्रथा है राग मध्यमावती का छोटा सा नमूना गाकर या बजाकर समाप्त करने का। कभी कभी तो दोनों ही करते हैं, अर्थात सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु बट्टु गाकर उसी के साथ अंत में एक छोटा सा टुकड़ा राग मध्यमावती में भी जोड़ देते हैं। अब आप सवाल करेंगे, ऐसा क्यों? राग सौराष्ट्रम और मध्यमावती को अंत में क्यों गाया जाता है और उन्हें मंगल राग क्यों माना जाता है? कारण जी ऐसा दिया जाता है कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती में स्वर जो लगते हैं, स्वर समूह इस तरह के हैं जिनसे मंगलमय माहौल उत्पन्न होता है और शांति होती है। अगर महफिल के दौरान कुछ ऐसे राग पेश किए गए हैं जिन्हें विवादी राग कहते हैं, यानी कि जिनके स्वर समूह अलग प्रकार के हों, तो उन रागों से उत्पन्न होने वाले चंचल और कम शांति वाले रस या सेंटिमेंट्स को मिटाकर शांति के साथ प्रोग्राम समापन करने के लिए मंगलम गाते हैं, ताकि श्रोतागण अपने कानों में इस मंगल रागों की गूंज के साथ घर लौटें। राग सौराष्ट्रम को कभी कभी प्रोग्राम के पहले आइटम में भी पेश करते हैं, लेकिन पवमान इस कीर्तन को शुरू में कभी भी नहीं गाया बजाया जाता है। पवमान के बाद उठ जाना चाहिए, और अगर पवमान गाने के लिए समय न हो तो कम से कम दो चार टुकड़े राग मध्यमावती में पेश कर दें और फिर खत्म कर लेते हैं। आज राग सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु मंगलम सुनाने से पहले मैं यह बता दूं कि राग सौराष्ट्रम 17वां मेलकर्ता सूर्यकांतम का जन्य राग है और हिंदुस्तानी पद्धति के आनंद भैरव से थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। स्वर जो लगते हैं वे हैं कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, अर्थात पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल के स्वर लगते हैं। चलन इस प्रकार है, सुनाती हूँ।

ये हुआ राग सौराष्ट्रम, जिसमें ज्यादातर मंगलम गाते हैं। राग मध्यमावती औडव राग है, जिसे हिंदुस्तानी पद्धति में मध्माद सारंग कहते हैं। इसमें लगने वाले स्वर इस प्रकार हैं: शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद, यानी कि गांधार और धैवत वर्ज्य हैं, जैसे कि मध्माद सारंग में भी वर्ज्य हैं। मध्यमावती का चलन इस प्रकार है, सुनिए।

ये था कर्नाटक शैली में राग मध्यमावती। श्रोताओं, अब इस कड़ी के साथ कर्नाटक रागों के बारे में एक श्रृंखला का समापन करते हुए कल से पेश करूंगी महाराजा स्वाति तिरनाल के कुछ हिंदी भाषाओं में रचनाएं। तो अब सुनिए MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में मंगलम पवमान सुतुड़ु बट्टू, जिसके अंत में कुछ क्षणों के लिए राग मध्यमावती का भी झलक है। कल मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।

ये था एम एस सुब्बलक्ष्मी के स्वर में राग मध्यमावती। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती।

0: अभी आप सुन रहे थे एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावधि। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति के ऐसे रागों की चर्चा जिनसे जुड़ी हैं कुछ पुरानी मान्यताएं। आप तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए शकुंतला नरसिम्हन कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा करेंगी कल से।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

फिल्म सती सावित्री का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मन्ना डे के युगल स्वरों में। भरत व्यास का लिखा ये गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में से गाया लता मंगेशकर ने। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर आज सुबह सुनिए नमस्कार उदयपुर फिट लाइफ मंडे। टुडेज ग्लांस में जानेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में, रास बिहारी बोस जयंती पर बातें होंगी और जानेंगे आईपीएल अपडेट और लोकल अपडेट्स। हेल्दी हैबिट्स में हमारा आज का टॉपिक है मॉर्निंग रूटीन को और अधिक उत्पादक बनाने के तरीके। सिटी अपडेट्स में जानिए शहर के प्रमुख स्पोर्ट्स क्लब और स्पोर्ट्स एरेना के बारे में और साथ साथ आज के लिसनर्स कनेक्ट से जुड़ना ना भूलिए व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9462697568। नमस्कार उदयपुर, आज सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी पर एक साथ।

0: मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। मजदूर सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक,

0: तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक सिटी पर।
1: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: फिल्म तकदीर का गीत था उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा त्रिमोथी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
7: की डोरी

फिल्म साजन का दो गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम के चंद और गीत आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद थोड़ा सा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, हाँ, आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या?
7: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

क्रोधी फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, हम है राही प्यार के, इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

ये FM रेडियो लेक सिटी है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार प्रभात और 8:15 मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म

0: पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस

0: योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
2: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आइए जिंदगी के हर पन्ने को खुशनुमा बनाएं और शुरू करें आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और फिट लाइफ मंडे में आज एक नज़र में हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस और रास बिहारी बोस जयंती पर। उसके बाद आज की खास खबरें और देंगे आईपीएल अपडेट्स।
1: ओ वेट विद्या, पहले ये तो पूछ लें कि आपका वीकेंड कैसा रहा उदयपुर? संडे की खुमारी के बाद जो ये मंडे है ना, ये वाली सुबह थोड़ी अलग सी होती ही है, पर टेंशन ना लीजिए, आज है फिट लाइफ मंडे तो हमारी हेल्दी हैबिट्स में हम जानेंगे मॉर्निंग रूटीन को अधिक उत्पादक कैसे बनाएं। सिटी अपडेट्स में जानेंगे शहर के प्रमुख स्पोर्ट्स क्लब्स और स्पोर्ट्स एरेना के बारे में, और सबसे खास भूलिए

0: तो श्रोताओं, आपको भी हमारे साथ चलना है और प्रोग्राम सुनना है नमस्कार उदयपुर। खेलें फुटबॉल बड़े स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावना है और आज है 25 मई का दिन जिसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खेल हमें अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और टीम वर्क की सीख देता है। आज के समय में फुटबॉल युवाओं को फिट और सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है जो 200 से अधिक देशों में खेला जाता है। फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन फीफा वर्ल्ड कप माना जाता है और वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेगी और यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। ज्योति,
1: बिल्कुल, और इंडियन फैंस को भी कहाँ हम पीछे छोड़ रहे हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ब्रॉडकास्टिंग डील्स लॉक हो चुकी है, यानी कि हम सब बिना किसी रुकावट के हर मैच का लाइव मज़ा ले पाएंगे। हालांकि इंडिया इस बार मैन क्वालिफायर्स के उस पार नहीं जा पाई है, पर भारतीय फुटबॉल टीम द ब्लू टाइगर्स फीफा रैंकिंग में लगातार अपनी जगह मजबूत करने के लिए विद्या जी जान से जुटे हुए हैं। इंडिया में फुटबॉल का इस बार रोमांच या कहें उबाल सातवें आसमान पर है और वो नहीं है जैसे कि पहले क्रिकेट का ही कहते ना कि जैसे आज आईपीएल चल रहा है तो उसी का डंका बजता था, पर अब देश का बच्चा बच्चा सुनील छेत्री, ललियान ज्वाला, चांगते और अनिरुद्ध थापा जैसे हीरोज का भी दीवाना है। इंडियन सुपर लीग और आई लीग ने पूरा माहौल बदल दिया है। मोहन बागान, मुंबई सिटी एफसी और बेंगलुरु एफसी जैसे क्लब्स भी यूरोपीय क्लब के समान ही दीवानगी रखते हैं। मतलब फैंस उनके बड़े पीछे हैं कि हमारे ये क्लब हैं और इनमें बड़ी अच्छा फुटबॉल खेला जाता है। पर अगर उदयपुर की बात करें तो हमारे उदयपुर का मिजाज भी सिर्फ झीलों और महलों तक सीमित नहीं है विद्या, फुटबॉल की दीवानगी है यहाँ के युवाओं में भी। और राजस्थान में

फुटबॉल का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनकर उभर रहा है हमारा उदयपुर। जिंक फुटबॉल का उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जावर है, वहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की जो वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल एकेडमी है उसने पूरे राजस्थान में उदयपुर का नाम रोशन किया है। देश का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुटबॉल ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ अंडर 15 गर्ल्स से लेकर अंडर 23 बॉयज़ तक के लोकल टैलेंट को तराशा जा रहा है। और इसके अलावा ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन उदयपुर की टीम, जिसने हाल ही में इतिहास रचते हुए नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। गर्ल्स फुटबॉल टीमें भी हैं जो उदयपुर का परचम लहरा रही हैं। और टूर्नामेंट की बात करना भी तो ज़रूरी है विद्या, तो मशहूर चैंपियनशिप है हमारे उदयपुर की मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल टूर्नामेंट। 1976 से जावर माइंस के स्टेडियम में होने वाला ये टूर्नामेंट सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े क्लब्स जैसे कि आर्मी, रेलवे और नामी राज्यों की जगह उनका पसंदीदा अखाड़ा रहा है। तो अब जिंक फुटबॉल यूथ टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है, जिसमें उदयपुर जोन की कई सारी टीमें हिस्सा लेती हैं और लोकल टीमें चैंपियन बनकर निकल रही हैं। तो उदयपुर के रोनाल्डो और मेसी प्रेमियों, अपनी डीपी बदलो, जोर से चलाओ लेट्स फुटबॉल। आप हमें बताइए कि आप फुटबॉल को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी डिटेल्स या अपनी जो व्यूज़ हैं हमें भेजिए व्हाट्सएप पर 9462697568, हमारे व्हाट्सएप नंबर।

0: क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस, जिनकी आज जयंती है। आप प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें से श्री रास बिहारी बोस का नाम भी आगे है। प्रथम महायुद्ध में सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, वो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ही निर्मित हुई थी। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते रहते थे, और आपने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए अपना अहम योगदान दिया। ज्योति
1: और विद्या, जब बात हो रही है देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौर की, तो एक सीन क्रिएट करते हैं। साल 1912, अंग्रेज सरकार भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर रही है। ब्रिटिश वायसराय

रहा है लॉर्ड हार्डिंग पूरे तामझाम के साथ हाथी पर सवार होकर दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा है। चारों तरफ पहरा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका होता है। वायसराय पर बम फेंक दिया गया था। पूरी ब्रिटिश पुलिस हिल गई कि आखिर ये किया किसने, किसने ये मास्टर प्लान बनाया। और इसके पीछे जो दिमागी जादूगर था, उनका नाम था रास बिहारी बोस। अंग्रेज़ पुलिस उन्हें ढूंढती रह गई, पर वो भेस बदलने में इतने माहिर थे कि उन्हें ढूंढ नहीं पाई। अगर हम बात करें कि जब आज काम पर निकल रहे हैं तो देश के इस महान नायक को एक बार याद करना ज़रूर बनता है। अपना काम हम ईमानदारी से करें, आसपास के लोगों की मदद करें, तो ये भी सच्ची देशभक्ति है। रास बिहारी बोस जी के चरणों में नमन करते हैं।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और बस बने रहिए यूं ही हमारे साथ। कहीं जाना नहीं है, बस ट्यून कीजिए हमारे दोनों ही चैनल और सुनिए हमारा प्रोग्राम। तो ज्योति, शहर की खास खबरों का अब हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले जयसमंद पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सोमवार को होने वाली जलापूर्ति मंगलवार को की जाएगी। ऐसे में श्रीनाथ नगर, SBCL ब्लॉक, वर्मा कॉलोनी, शीतल पार्क, डी ब्लॉक, विजय सिंह पथिक नगर, कच्ची बस्ती, ABCD ब्लॉक, चित्रकूट विहार, सेक्टर 14, इन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। और जून में होने वाले सीनियर महिला राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला महिला टीम के चयन के लिए मंगलवार यानी कल 4:30 बजे शिकारबाड़ी क्रिकेट मैदान पर ट्रायल होगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर मैदान पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रीय केंद्र की ओर से 26 मई से 6 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से बच्चों को राजस्थान की पारंपरिक कला, संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
1: बिल्कुल, उन्हें बच्चों को अपनी संस्कृति लोक नृत्य से जोड़ना चाहते हैं ना, तो विद्या कहेंगे कि आज ही इंक्वायरी कर लें और इसके बारे में फॉर्म भर सकते हैं। वैसे सोमवार की ये सुबह है, पर मौसम ने जो करवट ली ना विद्या, कल शाम को फतेह सागर की पाल पर ठंडी हवाएं चल रही थी तो मंडे का सारा आलस छूमंतर हो गया। हमें बताइए कि क्या कल शाम आप भी फतेह सागर पर थे? व्हाट्सएप नंबर 9462697568। चलिए मौसम की भी बात करते हैं लोकल अपडेट्स में। तो आज से नौतपा शुरू हो रहा है, यानी 25 मई से 2 जून तक गर्मी वाला दौर, प्रचंड गर्मी। मौसम विभाग कहता है तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। नौतपा यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ रही हैं, प्रकृति में अग्नि तत्व सक्रिय हो गया है, प्रचंड गर्मी का ये दौर चलेगा। और प्रदेश में कई हिस्सों पर शुरुआती 2 दिन

हीट वेव रहेगी, फिर कुछ दिन हवाएं और उसके बाद में आंधी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान रहा शहर का अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 30.1 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ अगली अपडेट ये है कि एनटीए ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और ये नई तारीखें घोषित की जाएंगी जल्द ही। रूटीन आवर्स हैं, आप घर से चलेंगे तो फ्लाईओवर वाले रास्ते पर चलेंगे तो मॉर्निंग है, रूटीन में थोड़ा सा तो ट्रैफिक ज़्यादा रह सकता है, कुछ समय लेकर चलिए ताकि आप अपने गंतव्य पर अगर पंचिंग करने चले हैं तो टाइम पर पहुंच सकेंगे।

0: तो श्रोताओं, अब आपको बता दें, कल यानी रविवार 24 मई को राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई किया। यह आईपीएल के इतिहास में इस तरह का पांचवा सबसे बड़ा स्कोर रहा। और अब जिक्र करें रविवार यानी कल ही 24 मई को दिन के दूसरे मैच की, तो दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया और प्लेयर ऑफ द मैच रहे कुलदीप। आगे अब जीत किसके सर होगी, ये देखते हैं ज्योति।
1: बिल्कुल, हमारी श्रोताओं से कहेंगे प्रिडिक्ट करें कि वो आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप करिए 9462697568। वैसे जो ये धुन बजती है ना, तो बिल्कुल एक रोमांच सा जाग जाता है ना विद्या, कि आईपीएल में नई अपडेट क्या है। तो आज सोमवार है, पर आज तो कोई मैच नहीं है, लीग मैच नहीं है, तो शांति कह सकते हैं। पर ये तूफान से आने के पहले वाली शांति है, क्योंकि अब प्लेऑफ के चक्रव्यूह में उतरने की रणनीति बना रही हैं टीमें। तो अब पॉइंट चार्ट पर अगर नज़र डालें तो इस सीज़न पॉइंट चार्ट ने कई टीमों के दिल तोड़े तो कई को आसमान पर बिठा दिया। इस बार टॉप फोर की रेस इतनी खतरनाक थी कि ना टॉप की तीन टीमें एक ही बराबर पॉइंट पर आकर रुकी हैं। टीम है रॉयल चैलेंजर्स, 14 मैच खेले, 9 जीतकर 5 मैच हारकर 18 अंकों पर। गुजरात टाइटंस का भी सेम ही है, 18 पॉइंट्स पर है। सनराइजर्स हैदराबाद भी 14 मैच खेलकर 9 जीतकर 5 हारकर 18 पॉइंट पर है। और कल के शानदार मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर 8 मैच जीते और 16 अंकों के साथ चौथी पोजीशन पर है, क्वालिफाई किया है प्लेऑफ के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये अगले जो मैच होंगे, जो मैच का रोमांच होगा, 26 मई को मंगलवार को धर्मशाला के स्टेडियम में पहला टॉप टू में जो मैचेस होंगे, आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला है। 27 मई को एलिमिनेटर डे है, तो फिर यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3 की सनराइजर्स हैदराबाद टकराएगी नंबर 4 की राजस्थान रॉयल्स से। तो जो हारा उसका बोर या बिस्तर गोल, और जो जीता वो रहेगा 29 मई शुक्रवार को होने वाले क्वालिफायर 2 मैच में। तो आने वाले दिनों में रोमांच और ख़ास होने वाला है, और देखने वाली बात होगी कि पर्पल कैप और जो हम ऑरेंज कैप के लिए बात कर रहे हैं, उनकी उसमें कौन आखिर लास्ट तक पहुंचता है, होड़ में टिकता है। तो चलिए कमेंट करिए, हमें, हम वेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर्स फिर से दोहरा दें 9462697568।

0: तो ज्योति, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो आपका मूड कैसा रहता है?
1: मंडे मॉर्निंग अलार्म बंद करके वापस सोने का।
0: सोना नहीं है, जगना है, क्योंकि एक उत्तम सुबह की दिनचर्या सेहत को बढ़ावा देती है। एक ऐसी दिनचर्या बनाए जो आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षमता को भी अच्छा रखे। और आज हम हेल्दी हैबिट्स में बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन को और अधिक उत्पादक कैसे बनाएं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ज्योति, वो पूरे दिन की दिशा तय करता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, इससे मन तो शांत रहता ही है। और कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर उठें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मोबाइल से दूरी रखें और खुद को थोड़ा समय दें, दिन की प्लानिंग करें। और अभी गर्मी का वक्त है तो सुबह हो सके तो आप सैर करें, अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाएं।
1: हाँ, छुट्टियां हैं। और मेरे हिसाब से एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपना ना बेड मेकिंग, यानी कि आपने जो बिस्तरा है अपना उठाएं, समेटें, तय कर सही करके रखें, क्योंकि इससे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आपने एक काम कंप्लीट कर दिया है, सक्सेस।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये आपको एक थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स देता है। इसके अलावा पूरे दिन भर की अगर आप जैसे वॉक भी कर रहे हैं तो टू डू लिस्ट तो आप मन में प्लान कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है। और आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए कुछ ऐसे बदलाव अपनाएं जो आपको बेहतर बनाने में सहयोग करें। अपनी इस डेली रूटीन को बोरिंग बनाने की बजाय थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी फिट रखें और बिना तनाव के एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आपको ऑलवेज हेल्दी बनाए रखें।
1: हाँ।
0: और इस हेल्दी हैबिट्स के बारे में आप अपने क्या व्यूज देंगे?
1: हाँ बिल्कुल, हमें बताइए 9462697568 में। इतने रिदम में गाना गा रही हूँ, उदयपुर जरूर आपके सुंदर से और अच्छे वाले व्यूज हमें मिल रहे हैं, है ना।

यह कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम रहेगा जारी, लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को है। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से बस कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के दो दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की तीन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दो दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च

0: अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता UCC के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपुतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 750 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पानी चोरी और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये

0: पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह दो चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं, विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि से विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और FM बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं। और हमारी झीलों की नगरी जो उदयपुर है, वो अब सिर्फ पर्यटन और हेरिटेज के लिए नहीं, बल्कि अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिटनेस कल्चर के लिए भी तेज़ी से पहचान बना रहा है। यानी हमारा उदयपुर जो ज्योति है, वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। और यहाँ कई मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब, स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमीज युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो शहर की हलचल में आज हम जिक्र करेंगे शहर के प्रमुख स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स अरेना। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा भोपाल स्टेडियम की। ये उदयपुर का एक बड़ा और प्रसिद्ध स्टेडियम है, जहां क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित होते हैं। आजकल युवाओं में टर्फ स्पोर्ट्स का क्रेज़ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए इन्फिनिटी स्पोर्ट्स अरीना, द स्पोर्ट्स विला और पल्स स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे प्लेसेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। यहाँ बॉक्स क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और फिटनेस एक्टिविटीज़ के लिए मॉडर्न टर्फ फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। नई जनरेशन के लिए प्लेयर्स के लिए एपेक्स स्पोर्ट्स एकेडमी, बेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी इन उदयपुर, जो प्रोफेशनल कोचिंग और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है।
3: हम स्विमिंग की बात भी अगर करें तो, क्योंकि समर चल रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स या जगह जहाँ पे आप स्विमिंग सीख सकते हैं, तो कई सारी जगह हैं। जैसे कि आप बीएन कॉलेज में जाएंगे तो एक भरोसेमंद आपको स्विमिंग पूल वहाँ पे मिलता है जो बहुत पुराना सा है, बहुत पुराना इन द सेंस कि वो एक रिलायबल जगह है जहाँ पे प्रोफेशनल

0: कोचेस के देखरेख में बच्चों को, इवन जो जीरो से स्टार्ट करते हैं उन्हें भी स्विमिंग सिखाई जाती है। लाइफ गार्ड्स की टीम हमेशा तैनात रहती है। सेफ्टी की भी लगभग गारंटी ही रहती है कि हम अपने ध्यान, अपना भी ध्यान रखें और हमारे साथ कोचेस भी हैं ही। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ें तो खेल गांव में भी बिगिनर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। शहर के गोवर्धन विलास में, शोभागपुरा में, आरसीए मैदान में और आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी, आलोक स्कूल में भी स्विमिंग पूल्स हैं जहां पे आप स्विमिंग सीख सकते हैं। इन समर्स में अगर आप कोई सा स्पोर्ट्स सीख रहे हैं तो व्हाट्सएप करना ना भूलें कि कौन सा समर स्पोर्ट्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन दिनों और आप सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात भी करेंगे। यहाँ शहर के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सारी स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, बॉक्सिंग रिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ बड़े टूर्नामेंट होते हैं, हॉकी और फुटबॉल के लिए बड़ा खुला हुआ ग्राउंड है, यहाँ प्रॉपर रनिंग ट्रैक बना हुआ है, इसके अलावा स्क्वाश कोर्ट है, डेडिकेटेड बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ सुबह शाम प्लेयर्स जमकर पसीना बहाते हैं।
1: और उदयपुर अब सिर्फ टूरिज्म सिटी नहीं बल्कि इमर्जिंग स्पोर्ट्स सिटी भी बनता जा रहा है। यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब और अरीनाज युवाओं को हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस और करियर अपॉर्चुनिटी दोनों ही दे रहे हैं।
0: तो अगर आप बीएन कॉलेज में हॉर्स राइडिंग और ये तीरंदाजी की भी शूटिंग और राइफल शूटिंग रेंज भी अपने उदयपुर में अवेलेबल है, इस तरह बहुत सारी सुविधाएं हैं और उदयपुर के जो शौकीन खिलाड़ी हैं हर तरह की सुविधाएं हमारे शहर में अवेलेबल हैं और आप इन छुट्टियों में इन चीज़ों को सीख कर या इन पर अपना वो मतलब एक वो होता ना परफेक्शन ला करके भी वक्त ये वाला बिता सकते हैं। आप हमें बताइए इन छुट्टियों में समर स्पोर्ट्स आपसे किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, आप किस चीज़ को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर 9462697568।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और लिसनर्स कनेक्ट का वक्त हो गया है ज्योति, और संदेश भी आ चुका है. सबसे पहला संदेश आया है किरण कुमावत का. ये कह रही है, खम्मा गनी विद्या मैडम, ज्योति मैडम, नमस्कार उदयपुर. ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा लगता है. इसमें आप जो भी गाने सुनाते हैं वो हमें बेहद पसंद आते हैं. आज जो आपने फुटबॉल के बारे में जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी. और मैडम, हमारे बच्चे मेसी और रोनाल्डो के प्रशंसक है और इन्हें पसंद करते हैं, और आप जो सिटी अपडेट देते हो आईपीएल के बारे में वो सभी हमें अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच किरण जी.
1: और अब ये हमारे पास मैसेज है सेक्टर 4 से, हिरण मगरी से. अशोक शर्मा जी कहते हैं कि आपने सुबह जो ये मॉर्निंग को और प्रोडक्टिव बनाए बताया ना, तो ये सुनकर आज मैंने सच में अपना फ़ोन रख दिया, नहीं तो रोज़ रोज़ सुबह उठते ही रील्स देखते देखते मेरी चाय ठंडी हो जाती थी. तो क्या बात है, ये आदत तो हर रोज़ के लिए होनी चाहिए, है ना अशोक जी. चलिए एक और मैसेज है हमारे पास, ये हैं देवर्ष खत्री, जयश्री कॉलोनी से, 9 ईयर्स के हैं. लिखते हैं इनकी फेवरेट टीम है RCB. चलिए तो हम भी आपके साथ इस टीम को चेयर करेंगे और देखते हैं कि ट्रॉफी कौन सी टीम ले जाती है. वैसे हमारी जो पसंद की हुई टीम है वही ले जाए ना. चलिए गाना भी सुनते हैं फिर और मैसेज पढ़ेंगे.

0: लिसनर्स कनेक्ट में हम अगला संदेश पढ़ रहे हैं। ये कमल कुमार सोहाल का है, बालकृष्ण जी सोहाल का, न्यू केशव नगर उदयपुर से, और इनके साथ परिवारजन भी हैं। लिखते हैं कि फुटबॉल दिवस पे इन्हें याद आ रहा है कि विद्यालय ग्राउंड में फुटबॉल खेला करते थे। पुस्तकें मित्र हैं, ये भी इन्होंने लिखा है। इन्हें गीत अच्छे लगे हैं प्रोग्राम में। आकाशवाणी को काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, 90 साल हुए आकाशवाणी को, और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं, इनकी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हुई ही हैं। और लिखते हैं कि जो गाने इन्हें पसंद आए, इसके अलावा लिख रहे हैं कि हम फुटबॉल के अलावा इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि कैरम, और उसके बाद हमारा जो फेवरेट, सबसे फेवरेट जो होता है ना, वो होता है अंताक्षरी, इसे लेकर सीरियस हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। और इसके अलावा लिख रहे हैं कि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फुटबॉल के लिए बड़ा हॉल और खुले मैदान की आवश्यकता होती है। 1980 में भोपाल नोबल्स विद्यालय में देख कर ही खुश होते रहे हैं। और ये इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है कि इनके बहुत सारे स्पोर्ट्स में रुचि है, इन्हें पसंद भी हैं, और साथ साथ में इन्होंने अपनी बेटी श्वेता का नाम भी लिखा है और डिम्पी सोहालका का नाम भी लिखा है। तो आप सभी परिवारजन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें मैसेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।
1: कुछ और संदेश भी बता दे ज्योति। रहमान कॉलोनी से रुखसाना बानू, इन्हें नमस्कार उदयपुर अच्छा लगता है, और जो हम आप जो जानकारी देते हैं वो सभी अच्छी लगती है। रुखसाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और संदेश विक्रम का, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा।
0: ये हैं चेतक सर्कल से दिग्विजय सिंह जी, रेगुलर लिसनर हैं, लिख रहे हैं कि आपकी बातें सुनकर हम सब पुराने दोस्तों ने लवकुश स्टेडियम में मिलने का प्लान बनाया है। अब वहाँ खेलेंगे तो क्या ही, पर हाँ, वहाँ की ट्रैक पर वॉक करते समय कॉलेज के दिनों की फुटबॉल वाली यादें ज़रूर ताज़ा करेंगे। तो विद्या, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसे ही मिलते रहिए, लाइफ को इन्जॉय करती रहिए। उदयपुर इस शहर की सुबह जितनी हसीन है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोगों का दिल और उनका कनेक्शन। मैसेज भेजते रहिए, बातें करते रहिएगा।
1: और अब लेते हैं इजाज़त आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से। आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
0: ज्योति।
1: तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और कार्यक्रम का अंतिम गीत इसी के साथ।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.
1: गुड मॉर्निंग उदयपुर, सुबह के 9:30 बजे हैं और आपके मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी पर हम हाजिर हैं। सोमवार की सुबह दिमाग में हफ्ते भर के काम का लोड और ऐसे में कई बार हम उदास हो जाते हैं जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती। तो आज की सुबह की शुरुआत एक ऐसी कहानी से कर रहे हैं जो शायद आज आपका पूरा नज़रिया बदल दे। एक नौजवान कई महीनों से नौकरी की तलाश में था, लेकिन वो जहाँ भी गया उसे मना कर दिया गया। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। मैनेजर ने उसका रिज्यूमे देखा और कहा कि तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके पास 2 साल का अनुभव हो। बिना अनुभव के हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। नौजवान निराश होकर वहाँ से चला गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे। घर लौटते समय उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग फल बेच रहे हैं, लेकिन उनसे कोई भी फल नहीं खरीद रहा। उसके मन में कुछ विचार आया। उसने अपने 100 रुपये से कुछ फल खरीदे, उन्हें धोया, छोटे छोटे डिब्बों में अच्छे से पैक किया और पास के दफ्तरों के बाहर उन्हें बेचना शुरू किया। लोगों को साफ सुथरे खाने के लिए तैयार फलों के पैक पसंद आने लगे और सारा माल जल्द ही बिक गया। अगले दिन उसने और फल खरीदे और फिर धीरे धीरे उसने एक फलों का छोटा सा स्टॉल लगा लिया। कुछ महीनों बाद उसने ताज़े जूस और फलों के कप बेचने शुरू कर दिए और कुछ ही समय में उसके शहर में कई सारे फलों के स्टॉल्स हो गए। एक दिन उसी कंपनी के पास से वो गुजर रहा था जिसने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। मैनेजर थे वहाँ पे, उन्होंने उसे पहचान लिया और हैरानी से पूछा, अगर उस दिन तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती तो तुम्हें क्या लगता है आज तुम कहाँ होते? नौजवान मुस्कराया और जवाब दिया,

शायद आज भी मैं आपके दफ्तर के अंदर बैठकर अपने महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहा होता। कहानी की सीख है कि कभी कभी हमारे सामने जो दरवाजे बंद होते हैं ना, वही हमें अपना खुद का रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

101.9 FM बैंड पर यह आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी नौतपा शुरू हो गया है और सुबह से ही हमें इसका असर महसूस भी हो रहा है। आयुर्वेद कहता है कि इस दौरान शरीर में पित्त बढ़ने से पानी की कमी, थकान, चक्कर, सरदर्द, अधिक पसीना, त्वचा रोग, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। आंखों में तेज जलन होती है, सनबर्न का भी एहसास होता है। पर फिर भी परेशान ना होइए, हर मौसम में अपना मज़ा होता है और उसे अब हैंडल करने का भी अपना तरीका होता है। जैसे कि हम हीट को कैसे बीट कर रहे हैं, शाम को फतेह सागर किनारे रौनक होती ही है, सुहानी हवाएं चलती होती हैं। इसके अलावा अगर खान पान में हम ध्यान रखें, पानी की बॉटल अगर घर से बाहर निकलते समय साथ रखें, सनस्क्रीन का ध्यान रखें और मतलब साथ लगाते चलें और सर को कपड़े से ढक के चलें या फिर कैप लगाए रखें, और खान पीने में अगर जैसे हम छाछ ले रहे हैं, सत्तू ले रहे हैं, नारियल पानी है, आम का पन्ना है, पर्याप्त मात्रा में यानी कि पानी पीना है। और ज़रूरत ना हो तो अगर 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकले ना, तब भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और इस गर्मी के मौसम को भी यूँ ही बीत जाने दे सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: ये है आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। नौ तपा शुरू हो चुका है और जिले में 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 का आगाज भी हो रहा है। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सभी उपखंड पंचायत समितियां, नगर निगम और नगर पालिकाओं में जल संरक्षण से जुड़ी अलग अलग गतिविधियां होंगी और इन तरीकों को आम लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जाएगा। देखिए हीट वेव का वक्त है और प्रशासन मुस्तैद है, बिजली पानी की जिन जगह व्यवस्था है वहाँ ठीक है, पर जहाँ तकलीफ है तो हमें चाहिए कि हम बिजली और पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सलीके से करें, ताकि और लोगों को भी परेशानी ना हो जहाँ इसकी किल्लत है।

और अब जान लेते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदनों के बारे में। 27 मई से ये शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो अभ्यर्थी खुद भी भर सकते हैं या तो फिर ई मित्र के जरिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। इसमें 50,000 वरिष्ठ नागरिक देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं और 6,000 नागरिक हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आवेदकों का चयन लॉटरी से होगा, कंप्यूटराइज होती है ये, और पात्र आवेदक होंगे 1 अप्रैल 2026 को न्यूनतम 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके यात्री, और इस बार अधिकतम 28 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इस यात्रा में नहीं पात्र माना गया है। आवेदक मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जमा कराएंगे, ये अनिवार्य है। और इसके अलावा आयकर दाता, सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी या पूर्व में इस यात्रा का लाभ ले चुके लोग इस यात्रा के लिए अपात्र रहेंगे।

तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 एफएम रेडियो लेक्स सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक्स सिटी पर।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी। आज है सोमवार और आज एक विशेष पहल हो रही है हमारे शहर में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य नियंत्रण के साझे में नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच में सुबह 9 बजे से स्ट्रीट फूड विक्रेता प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशाला शुरू हो गई है। इसमें विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रशिक्षण विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे और साथ ही यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा पानी बताशा, चाट पकौड़ी, ठेला धारक, आइसक्रीम लॉरी और कियोस्क संचालकों सहित सारे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए यहाँ प्रशिक्षण और उसके बाद प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और सभी को एक विशेष किट, एप्रन, हेड कवर, ग्लव, सैनिटाइजर ये सब दिए जाएंगे और साथ में मददगार डार्ट बुक और मैनुअल बुक मुफ्त दी जाएगी। तो जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इसमें आ रहे हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड साथ लाने की अपील की गई है। सुबह का वक्त है, ये आयोजन हो रहा है आज हमारे शहर में। साथ ही 25 से 31 मई तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां होंगी सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जो जिले में हैं। उद्देश्य है आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना। ये वीक मनाया जा रहा है और इसमें घर घर सर्वे किया जाएगा और नियमित मॉनिटरिंग होगी। जो जागरूकता अभियान हो रहे हैं, जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनमें 25 से 27 मई तक महिला आरोग्य समिति की बैठकें होंगी, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति की भी बैठकें होंगी और प्रभात फेरी के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसके बाद 28 से 30 मई तक तंबाकू उपभोक्ताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तंबाकू मुक्ति परामर्श सेवाओं से जुड़ा जाएगा। 31 मई को विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग होगी और ज़रूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को नज़दीकी डेंटल क्लिनिक रेफर भी किया जाएगा।

0: गुड मॉर्निंग लेक सिटी सेगमेंट अब पूरा होता है, बने रहिए हमारे साथ।
1: हमारी व्हाट्सएप आपके ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक सिटी पर
0: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी। मंडे मॉर्निंग सुबह की 10 बजे का वक्त हुआ है और ये प्रोग्राम है तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। इसमें हम कुछ गाने प्ले करते हैं और उन्हीं गानों को अगर आप भी पसंद करते हैं तो अपने लाइक्स हमें भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। गाना हम प्ले करेंगे और सबसे पहले जो गाना आने वाला है वो करण जौहर की फिल्म से। आज है करण जौहर का जन्मदिन, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। और अगर आप भी इस गाने को पसंद करते हैं तो हमें व्हाट्सएप करना ना भूलिए। उठाइए जल्दी से फ़ोन और मैसेज कीजिए आपके नाम के साथ।

बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, टेलीविजन होस्ट करण जौहर, जिनका आज 54th बर्थडे है, हर साल 25 मई को वो अपना जन्मदिन भव्य तरीके से मनाते हैं। चलिए उन्हीं की फिल्म का गाना हमने सुना और इसे पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम अब आपको बता दें। ये हैं लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रामा पुरी, पाली पुरी, सुनील पाठक, वीके पुरी, विनोद पुरी। और हमें कुछ गीतों की फरमाइश भेज रहे हैं श्रोता, आपसे निवेदन है आज हम गाने प्ले करेंगे और अगर आप भी उन्हें पसंद करते हैं तो अपने नाम के साथ लाइक्स भेजिए। और ये अगले नाम हम शामिल कर रहे हैं, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी हैं पंजाब टोरवाल के श्रोता। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। और ये हैं हरी शंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरनी, कोलकाता पश्चिम बंगाल के श्रोता। साथ में है विक्रम और ये श्रोता है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन और एटा के हमारे ये श्रोता हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म के गाने के लिए लाइक्स मिले हैं। ये हैं हफीज़ा मिथाई, नफीसा, फकरू यूनुस, असगर, सकीना पटवा, जकिया गोरिया, बस्ती राम जी के बारी उदयपुर के श्रोता हैं। और हीरा मणि वर्मा हैं, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडवो कोयल मल्होत्रा और इनके पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा हैं। और श्रोता जो जिनके नाम हम शामिल कर रहे हैं, प्रकाशपुरी गोस्वामी, आज़ाद नगर, भीलवाड़ा फरारा वाले, धीरज गोस्वामी और मनीषा गोस्वामी भीलवाड़ा आज़ाद नगर के श्रोता हैं। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी,

और श्रोता हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी छत्तीसगढ़ की श्रोता हैं। LCS के तराने प्रोग्राम है तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, और श्रोता हैं जिन्होंने ये नाम लिख भेजा है, देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका, प्रभा देवी तामूरिया, मास्टर अल कबीर, धन्यवाद के साथ आपका भी बहुत धन्यवाद है। इसी गाने के लिए लाइक्स मिले हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जालंधर के श्रोता हैं। कुछ गानों की फरमाइश भेज रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप गाना अगर हमारे बजाए हुए पसंद आते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए। और हमारा फ्राइडे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है सुबह 10:45 पर, आप उसमें अपनी फरमाइश के गीतों के लिए नाम भेज सकते हैं। दूसरे श्रोता जिनके नाम हमें मिले हैं वो है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, दतरंगी के श्रोता हैं, उत्तम कुमार बघेल हैं, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं, राजेश कुमार हैं पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हैं और खंडाला से हैं, आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे बीड शहर महाराष्ट्र के श्रोता हैं। चलिए कुछ और नाम हम शामिल करेंगे, उससे पहले अगला गाना सुनते हैं, कल हो ना हो फिल्म का नाम है और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462697568।

सोनू निगम का गाया ये अलहदा सा गाना कल हो ना हो मूवी से हमने आपको सुनवाया टाइटल ट्रैक और इसके लिए जो लाइक्स मिले हैं मिले जुले नाम हम आपको बता रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से महराज जहां गुलाम साबिर राही ताज मोहम्मद अंसारी हैं और श्रोता हैं ये भी लोराना कॉलोनी से सिमरन यादव पिंकी यादव कुछ कुछ होता है फिल्म के गाने के लिए इनके लाइक हैं अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुश्री बुरांडे धनश्री बुरांडे महाराष्ट्र के श्रोता हैं और श्रोता हैं फ्रांसिस जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी और फाजिल का पंजाब खेड़ा से हैं परिवार भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा लाड़ी खेड़ा शालानी खेड़ा शालिनी खेड़ा और श्रोता हैं सत्यनारायण बारी कुछ कुछ होता है फिल्म के लिए इनके लाइक मिले हैं शांति वारी हैं साथ में उदयपुर वारियों की घाटी के हमारे श्रोता हैं जगदीश चौक से सीमा वारी नाहर सिंह वारी हैं चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा हैं हमारे उदयपुर के श्रोता और ये अपने परिवार के साथ इस गानों के लिए लाइक्स भेज रहे हैं और बहुत लंबा सा मैसेज आपने भेजा है हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि लिसनर्स कनेक्ट प्रोग्राम का वक्त होता है 9:10 से 9:30 तक और इस वक्त आप सुन रहे हैं तराने हमारे व्हाट्सएप आपके इसमें हम जो गाने बजाते हैं उनमें आपके लाइक्स के लिए हम नाम साझा करते हैं नाम शामिल कर रहे हैं प्रेम गोस्वामी हल्दीघाटी बदीचा जिला राजसमंद से और ये श्रोता हैं और तारा गोस्वामी टीटू गोस्वामी नीमच खेड़ा के श्रोता हैं और श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया पप्पी भाटिया जमशेदपुर से तरुणा पूर्विया कल हो ना हो फिल्म के इस गीत के लिए अपने लाइक भेज रही हैं साथ में है परिवार से झमक पूर्विया सोहन देवी पूर्विया पूरव पूर्विया लक्ष्मी लक्ष्यराज पूर्विया हाथीपुर उदयपुर के श्रोता और कल हो ना हो इसी गीत के लिए हमें और लाइक्स मिले हैं मोहम्मद सलीम शाह रजिया बानो इनायत टेलर अक्सा इकरा मस्जिद एरिया से और मुस्तफ़ा कॉलोनी सलम्बर से धन्यवाद के साथ हम भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं और इसी गाने के लिए और नाम हम शामिल कर रहे हैं भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान हैं सत्येन चौहान तरुश्री चौहान एडवोकेट कमलेश चौहान मधुकांता चौहान नव्याश्री नित्याश्री और सभी को ये गाना पसंद है गणपतलाल विजयवर्गीय हैं और इनके साथ हैं भगवती पुष्पाबेन फेना गर्ग और पूरा विजयवर्गीय परिवार महेश्वरी मौला मावली से हैं बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर से सिराज हुसैन शरीन और पूरा मोतीवाला किन्स और इनके कजिन्स हैं जिन्हें ये गाना पसंद है और इसी गाने के लिए जवाहर नगर उदयपुर से बाबूबाई भारती देवी हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी भारती नाचानी विनित नाचानी मिथिल नाचानी प्रगति नाचानी जिन्हें ये गाना पसंद है और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं उदयभान पाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार है इनका ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीब हसन कल हो ना हो फिल्म के गाने के लिए और इसी गाने के लिए हमारे और श्रोता के भी संदेश मिले हैं पर उन्होंने अपने नाम नहीं लिखा है सिर्फ फिल्म का नाम और गाने का नाम लिखा है आपका ये लास्ट में 635 नंबर है हम आपसे कहेंगे कि आप अपना नाम लिख कर हमें भेज सकते हैं जब्बार मोहम्मद हैं खान जी पीर उदयपुर के श्रोता कुछ कुछ होता है फिल्म के गीत के लिए आपके लाइक मिले हैं और इनके साथ हैं फरीदा शबनम निदा इरम कलीम राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सारे सदस्य हैं और प्रताप नगर से नरेश दवे रंजना दवे अंशुल दवे हैं कुतुबपुरा उदयपुर से अशरफ खान रईसा खातून मंजू निम्मी असिफ़ रोड से नजीब खान सबीहा खानम शीबा और शहला हैं तीज का चौक से राजकमल खंडेलवाल शैलेंद्र खंडेलवाल इंद्रलाल और दीपक हैं सही वालों की हवेली से जगत सिंह चौहान सविता चौहान मोना और धीरज चौहान हैं जगदीश चौक से भावना रावत नितिन रावत और उमावारी सखी और साक्षी वारी हैं इनके साथ में लिखने में आप थोड़ा टेक्स्ट का ध्यान रखिए

राजानी, भावना राजानी, कोठीबाग, भट्टी की बाड़ी उदयपुर के श्रोता हैं और श्रोताओं के नाम भी हम शामिल करेंगे। बस उसके पहले गाना और सुन लेते हैं। कुणाल खेमू का जन्मदिन है, उन्हीं की फिल्म से ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। और अगर आप पसंद करते हैं कलयुग फिल्म के इस गाने को तो हमें लाइक्स भेजिए 9462697568 हमारे व्हाट्सएप नंबर।

0: कुणाल खेमू आज 40th ईयर्स के हो गए हैं और प्रोफेशनल लाइफ्स के साथ साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे। सोहा अली खान के साथ उनकी स्टोरी बहुत दिलचस्प है। बहरहाल कलयुग फिल्म का ये गाना हमने सुना और इसके लिए जो लाइक्स मिले हैं उनके नाम आपके साथ बता दें, साझा कर दें। छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और प्रीतिशा संधू हैं। ये नवा शहर से है, ये है हरगोबिंद नगर के श्रोता हमारे। और श्रोता हैं मदन मंजू माहिर न्यू भोपालपुरा उदयपुर से, नन्ना मुन्ना युगू हैं जमुनाबाई रूपलाल जी माली न्यू भोपालपुरा से, प्रदीप माली, रीना भाभी, डॉली माली और न्यू भोपालपुरा के ही श्रोता हैं, निर्मला दी, मनीषा जी, हेमंत जी, तारा माली, सोनिया माली, रोहित, रमेश न्यू भोपालपुरा उदयपुर से, जितेंद्र, मंजू मासी, पुष्पा मासी, चिराग, मोनी, आप सभी के साथ साथ हमारी भी मासी हाँ। और इस तरह से आप नाम लिख के भेजते हैं, चलिए अपनापन अपनी जगह अच्छा भी लगता है। सेक्टर 9 से हैं हरीश जीनकर, मंजू जीनकर, जय जीनकर, माधवी जीनकर, छुटकी और किट्टू, इन्हें सारे गाने अच्छे लग रहे हैं। ये नसीराबाद से हैं महेंद्र डाबी, ममता डाबी, हनी गुना से, ठीक है। मुकेश जीनकर हैं, अजय जीनकर, प्रिंस जीनकर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के श्रोता, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से हैं और मुकेश जीनकर के साथ नाम शामिल कर रहे हैं। रेणु जीनकर का भी पनिहारी वाड़ियों की घाटी से हैं दीपक रावत, किरण रावत और साथ में है नक्ष रावत। आयुर्वेद चौराहा से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान हैं। कलयुग फिल्म के गाने के लिए लाइक मिले हैं तुलसीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवनेश, पुरा, खत्री परिवार, कलड़वा, सांची ग्रुप। और धन्यवाद दे रहे हैं श्रोता, रमेश है इनका नाम, मला तलाई उदयपुर से, जैनब, तस्नीम, फातिमा और उनमें हनी को, ये उन्हें सभी को ये गाना ये पसंद है। और श्रोता हैं सलमा अतारी, खोजमा अतारी, सुग्रा अतारी, संजीदा तबस्सुम, अदीशा कलकत्ता वाला खरोल कॉलोनी उदयपुर के श्रोता, सोनू और पिंकी हैं भिलूराना कॉलोनी उदयपुर से, कलयुग फिल्म के गाने में इन्होंने कहा है नाम शामिल करने को, हमने आपका नाम शामिल किया। बिलादर रोड से है नाथूलाल देवड़ा, गोपाल देवड़ा और मला तलाई से फयाज हुसैन रसिया, फरीदा बानो, मोहम्मद सैफ और रुबिना को भी गाना पसंद है। और रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, किरण, ललित जी, अजय, भावना, हेमलता, विनायक जी, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा और हमारे साथ हैं सेक्टर 7 चामुंडा माता मंदिर से शांता देवी कुमावत, मनोज कुमावत, सुनील कुमावत। कलयुग फिल्म के गाने के लिए लाइक मिले हैं, शुक्रिया आपका। और मलोद कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, अनमोल मिगलानी, विवान, महावीर संधू के नाम हमने कार्यक्रम में शामिल किए हैं। लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल खिरादीवाड़ा, रंगीला भैरू चौक से हैं, विनोद जी कुमावत, नीलम कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी, कोमल कुमावत, हिरण नगरी सेक्टर 5 के श्रोता, शिवलाल जी कुमावत, छगन देवी कुमावत, राजकुमार मोहित, चारभुजा मंदिर खिरादीवाड़ा से परमानंद कुमावत, लाल जी और सभी साथी धानमंडी उदयपुर से, चंद्रशेखर भावसार, संगीता भावसार, कपिल भावसार, दामिनी भावसार, लविशा भावसार, 3 मोहाली चौथा उदयपुर के श्रोता और राजकुमार शर्मा, पुष्पा शर्मा, बाबिलोकी शहरी उदयपुर से, सत्येंद्र भावसार, रितु भावसार, राहुल भावसार, दामिनी भावसार, गल्ला मंडी शहरों से होर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं। दूसरे श्रोताओं के नाम भी शामिल कर रहे हैं, भरत जायसवाल, सोनी, गरासिया गांव, मंडवा, डूंगरपुर राजस्थान से कलयुग फिल्म के गाने के लिए लाइक है आपका। मुकेश वेद सिसारमा से हैं उदयपुर से और मनन वेद, ईशानी वेद, शीला वेद धन्यवाद के साथ और इनके साथ है पूरा चौहान परिवार। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी, इन्हें गाने पसंद आ रहे हैं। और कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम शामिल करेंगे ही। और उससे बता दें कि आज की चाय की चुस्की कुछ कम रह गई थी, प्रोग्राम का नाम है एलसी इसके तराने व्हाट्सएप के बहाने और आपके लाइक्स हमें बराबर मिलते रहें इसी की उम्मीद करते हैं। चलिए अगला गाना आपको सुनवाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। फिल्म का नाम होगा हमराज और गाना है ना मुंह छुपा के जियो। आपको भी ये गाना पसंद है तो लाइक्स आप हमें भेज सकते हैं 9462697568 हमारे व्हाट्सएप नंबर।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
6: और ये
7: मेरी गुड़िया थी ना।
8: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: RBI कहता है?
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं LCS के तराने, व्हाट्सएप के बहाने। गाना हमराज फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इसके लिए जो लाइक्स हमें मिले हैं वो आपको नाम बता दें, रमेश टेलर, अंजू, मयंक, तनीक्षा, लक्षिता टेलर परिवार, गायरियावास रोड उदयपुर के श्रोता हैं। इनके पूरे परिवार का नाम हमने शामिल किया है। कुवैत से हैं ताहिर अली, तस्नीम, अमतुल्ला और हसन को ये गाना पसंद है। और श्रोता हैं प्रकाश चंद्र आमिता, इंदिरा देवी आमिटा, शैलेंद्र बाबू आमिटा, सुरुचि आमिटा, नेहा आमिटा, चैरी किया, लिली आमिटा और पूरा आमिटा परिवार सेक्टर 5 उदयपुर के श्रोता हैं।

हैं प्रकाश चंद्र आमिता, इंदिरा देवी आमिटा, शैलेंद्र बाबू आमिटा, सुरुचि आमिटा, नेहा आमिटा, चैरी किया, लिली आमिटा और पूरा आमिटा परिवार सेक्टर 5 उदयपुर के श्रोता हैं। कलयुग फिल्म के लिए लाइक्स मिले हैं धान मंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज बाला हरिव्यासी, मेगा गीत हरिव्यासी और राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्यों के भी। नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, इन सभी का नाम शामिल कर रहे हैं एटा के आप हमारे श्रोता हैं।

कुछ और नाम शामिल कर रहे हैं जिनके लाइक्स हमें मिले हैं, ये हैं ओम प्रकाश भावसार, मधु भावसार, निर्जन भावसार, प्राची भावसार, दीपेश भावसार, सुरभि भावसार, नन्ना मुन्ना, नन्ना नमा और मोहाली चौदा उदयपुर के श्रोता हैं। विक्रम हैं जिन्हें हमराज फिल्म का गाना पसंद आया, ये हैं विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशीता, भंवर वशीता, गौतम वशीता, राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धोली पावड़ी उदयपुर के श्रोता, बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी रंगास्वामी, साधना रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, भानु प्रताप दास रंगास्वामी, महिमा रंगास्वामी हैं, भास्कर रंगास्वामी, चित्रांची रंगास्वामी, शांति भाभी जी, कमला जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और पूरा खोबानी परिवार है। हमराज फिल्म के गाने के लिए लाइक हैं बद्रुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद, मालू अंसारी बनारस से, और हमराज फिल्म के लिए ही लाइक्स हैं मलय कनौजिया, ऋषि कनौजिया, प्रकाश कनौजिया के भी आयुर्वेद कॉलेज के ये श्रोता हैं। गोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्यन चौहान, तरुणा चौहान, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता चौहान, निव्याश्री, नित्याश्री, सभी को हमराज फिल्म का गाना पसंद है। अटार नानगांट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा के लाइक्स भी हमें मिले हैं और गाना पसंद है, और जिन्हें गाने प्रोग्राम अच्छा लग रहा है सुरेंद्र सोलंकी हैं, इनके साथ भावना, प्रदीप, हर्ष, रानू, पार्थ और पूरा सोलंकी परिवार, सेक्टर 11 उदयपुर के श्रोता, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिदान खुराना, मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा चिंतामणि की घाटी से हैं, हमराज फिल्म के लिए ही लाइक हैं। एमपी कॉलोनी से महेंद्र चावला, रमेश कमेदी, संदीप बंसल, बक्सर बिहार से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी हैं, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अतीबा और दानिश अंसारी, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विदित कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, नाम शामिल कर रहे हैं दुबेहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय के भी, ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय हैं बल्लिया के श्रोता, नागा नगरी से हैं अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई, सेफन भाई, तुलसी मस्किन परिवार को गाना अच्छा लगा है, नाम हम शामिल कर चुके हैं, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी हैं, दिलीप सिंह चौहान, ममता चौहान, इशिका चौहान, निखिल राज सिंह आसप पुरा विहार डांगियों की पंचोली से, और ये श्रोता हैं पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा हैं, गंगानगर से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, कल हो न हो फिल्म के लिए इनका लाइक है, बाबूलाल जी, दिनेश टाक, मुकेश टाक, पुष्कर टाक, सूरजपोल रेगर कॉलोनी से हैं, दिनेश जिनकर, मोहित जिनकर, इंदु जिनकर, भूत महल के श्रोता हैं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया अयान बाबू, ये हैं उत्तराखंड के हमारे श्रोता, मुकेश पटारिया, मामा जी, लाला राम जटोलिया, दीप टेलर, सेंट्रल एरिया उदयपुर से, हमराज फिल्म के गाने के लिए और लाइक हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान परिहार, पूजा परिहार, गोपालगढ़ राजस्थान से हैं, और ये श्रोता हैं गैरियावास मेन रोड से राजपूती पोशाक का पूरा स्टाफ, महालक्ष्मी मैचिंग, तो आप अपना नाम लिखा कीजिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। नेपानगर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह हैं, और हमारा नाम शामिल करें लिख रहे हैं मस्किन परिवार जी, आपका नाम शामिल हो चुका है। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे हम, और ये है खानदान फिल्म का गाना, सुनील दत्त की फिल्म है ये गाना और नूतन दोनों का ये गाना है, और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो हमें लाइक्स भेजिए।

सुनील दत्त न सिर्फ एक महान अभिनेता बल्कि दयालुता, शक्ति और मानवता के प्रतीक भी रहे। भारतीय सिनेमा और समाज में उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। दमदार अभिनय से लेकर निस्वार्थ समाज सेवा तक उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर ये गाना हमने आपको सुनवाया और इस गाने को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम अब शामिल करते हैं। उदयपुर कृष्णपुरा से आयुष, गरिमा, राहुल, पायल, कृष्णा, इंदिरा, मयंक, भव्य, राज, भंवरी बाई और लेक सिटी श्रोता संघ के सदस्य हैं। भंवरलाल जी नायक का नाम भी हम शामिल कर रहे हैं। किंजू कुमावत, शौर्य, कार्तिक, दादाजी, दादी जी, हिरणमगरी सेक्टर 5 उदय पार्क से हैं। तुलसीराम कुमावत, कांता कुमावत, तोशिका, रवि, महादेव मंदिर खिरादीवाड़ा से, किशोर टेलर, जयंत राठौर, मालदास चिकीसहरी से, शशांक कुमावत, कार्तिक, मोहित, पल्लू, यूवी कुमावत, हिरणमगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हमराज फिल्म के गाने के लिए लाइक मिला है। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष के और नाम शामिल कर रहे हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू के भी हमराज फिल्म के ही गाने के लिए नाम शामिल कर रहे हैं। तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन, रचिता मस्किन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, रिधान खुराना के भी और श्रोता हैं। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान बिलाड़ा राजस्थान से हैं। मुकेश भावसार, पद्मावती भावसार, राहुल भावसार, दामिनी भावसार, हर्षल भावसार, कुसुम भावसार, आकाश भावसार और निशा भावसार और श्रोता हैं। बोहरा गणेश जी से चंद्र प्रकाश अग्रवाल, चंदा अग्रवाल, हर्ष और भरत अग्रवाल। काष्ठकला मार्ग से अमृत लाल जी, रेणू और रविशंकर और हनुमान जी मंदिर से अशोक जी, सीता देवी, सूरज, तसु, हनु, हेनो हमराज फिल्म के गाना इन्हें पसंद है। ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत कुमावत और नन्ना टप्पू हैं दिवाली से और SD कटक जाखोद, शंभूर दयाल खटक राजस्थान के श्रोता हैं। विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। अशोक हैं प्रताप नगर से जिन्हें गाना पसंद है ये। प्रेमलता शर्मा, वेदांशी शर्मा, चिंतामणि की घाटी उदयपुर के श्रोता हैं। सज्जन नगर उदयपुर से हैं। मुसरत जहां, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इरशाद, सोनू, आफरीन, मोना और राधा, राजेश भंडारी, नम्रता भंडारी, एडवोकेट लक्ष्यराज भंडारी, पृथ्वीराज भंडारी भोपालपुरा उदयपुर के श्रोता हैं। सुनील दत्त का गाना तुम ही मेरे मंदिर के लिए जो हमें लाइक्स मिले हैं वो हैं। नया गांव पाली से जगदीश राज, रंगास्वामी, साधना, चित्रांशी, भास्कर और पूरा भीमर परिवार, निकुंज, नक्श, पूजा, लकीदास रंगास्वामी हैं जिन्हें ये गाना पसंद है। समाद अब रहमान कॉलोनी उदयपुर से हैं। अब्दुल समाद, फिरदौस बानो, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद रजा, मुकेश बडारिया रेगर कॉलोनी मावली गांव से हैं। खानदान फिल्म के गाने के लिए लाइक्स मिले हैं। नीरज, ध्रुवेश, प्रेम शंकर, दिव्यांश, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा उदयपुर के श्रोताओं के भी। भोपाल बाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री, वारियों की घाटी से गुनगुन है साथ में और श्रोता हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीरी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, रामपुरा से हैं सुधा रानी वैष्णव और लेक सिटी के तराने प्रोग्राम के लिए ये मध्य प्रदेश से लाइक भेजा है अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकित सिंह, प्रीति सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह ने भी। चित्तौड़ा हाउस विश्वविद्यालय मार्ग से हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, शारदा चित्तौड़ा, रॉबिन चित्तौड़ा, विकास चित्तौड़ा, भावेश चित्तौड़ा, सोनाली पुत्र वधु हैं विनीता चित्तौड़ा, कृतिका, दिया, प्रियांश, तनिष्का चित्तौड़ा, आप सभी का शुक्रिया। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख जाफराबाद के श्रोता हैं। कृष्णा कुमावत, मिठू जाला, सौरव कुमावत उदयपुर से हैं खानदान फिल्म के गाने के लिए और ये हैं भीलवाड़ा से प्रकाश गोस्वामी, संतोष गोस्वामी जी, धीरज गोस्वामी, मुस्कान गोस्वामी, नीतू गोस्वामी, सरोज गोस्वामी, दुर्गा गोस्वामी, मीनाक्षी जिन्हें ये गाना पसंद है भीलवाड़ा से, इन पूरे परिवार का नाम हमने शामिल किया है। और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा के हमारे श्रोता। जयपुर से राजेंद्र अरुणा

मुंबई से विनोद, रंजना जी राजावत, हरिगढ़ से मनोज मनीषा जैन, संभाजीनगर से संजय सपना जैन, उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन और कमल सोनिया, हरीश मोनिका, भाविक मीनाक्षी, आयुष मंथन, प्रिशा, हर्षल, रोनित जैन तुलसी नगर भवाना के श्रोता हैं। सिसारमा से कैलाश नाथ लाइक किया है खानदान फिल्म का गाना इन्होंने। प्रियंका गोस्वामी, प्रद्युमन पुरी गोस्वामी, दिवाली नीमच खेड़ा से हैं श्रोता देवमगरी से। और ये हैं कुमारवाड़ा से ललित कुमार प्रजापत, अशोक कुमार, नामदेव, जाकिर हुसैन। और श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम अफजल हैं। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और मिसेस सुनीता साहनी। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो, विलीज डिकैस्ट्रो हैं सहारनपुर के श्रोता। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय हैं, रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पवार, पिंकी, मनस्वी, चेतन्या और कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरणमगरी सेक्टर 5 उदयपुर से श्रोता हैं ये हमारे। और श्रोता हैं लाल सिंह कुमावत, नान जी, भरत जायसवाल, लाल जी, दिलीप जी, लक्ष्मी मार्ग अमल का कांटा से, संजय कुमावत, कविता कुमावत, राकेश, मीना, आर के पुरम उदयपुर से, किंजल कुमावत, हर्षिता कुमावत, शौर्य, गजेंद्र, हिरणमगरी सेक्टर 5 से, गोविंद जी, राजकुमार, कैलाश, नवीन, लाल जी, श्रीनाथ मार्ग खिरादीवाड़ा के श्रोता हैं। और श्रोता के और नाम हम शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले अगले गाने की ओर रुख करेंगे। हम आपको गाना सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल डुओ जोड़ी से, लक्ष्मीकांत जी को डेडिकेट करते हुए बॉबी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। लाइक्स भेजिए 9462697568 नंबर पर।

ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के इस मासूम दौर का ये गाना आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म से। और इस गाने के लिए जो लाइक्स हमें मिले हैं वो आपको बता दें, गोविंद सिंह, नीलम, सिमी, दिशा, प्रीति, देवराज, ताफी, नकुड़ा नगर, उदयपुर से हैं बॉबी फिल्म के गाने के लिए। और हमराज फिल्म के लिए लाइक मिले हैं सैफी कॉलोनी खांजीपीर से, डॉक्टर निदा अनाबिया, रेहाना बानो, मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार हुसैन के। प्रेस कॉलोनी खांजीपीर से है रियासत अली, जाहिदा बानो, इमरान अली, निगार परवीन, इरफान अली, जाकिरा बानो, चंद्रशेखर भावसार, संगीता भावसार, कपिल भावसार, दामिनी भावसार, लविशा भावसार, तीन मोहली चौथा उदयपुर के श्रोता हैं।

चलिए लाइक्स हम शामिल कर रहे हैं और गुंजाइश पति तो गाना सुनवाएंगे। ए दिल है मुश्किल फिल्म का नाम है, अगर आप पसंद करें और नाम भेजना चाहें तो 9462697568 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। नाम शामिल करते हैं वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत और एसएन रावत के, जगदीश लाल, पुष्पा टेलर, श्री रामचंद्र, लीला देवी पवार, दिलीप कुमार, जमुना चौहान, श्री प्रकाश चंद्र, विंध्या कनेरिया, ये हमारे श्रोता हैं बड़ी सादड़ी से। किरण कुमावत हैं और बॉबी फिल्म के गाना उन्हें पसंद है। मनोज सुनील लाल मगरी सेक्टर 7 से हैं, साथ में है शांता देवी और ये हैं मनु जी पेंटर साहब, सुंदर देवी, किरण, अज्जू, हेमा, याची, सिद्धि, नील, छोटू, LCS के तराने व्हाट्सएप के बहाने प्रोग्राम अच्छा लगता है इन्हें और अच्छे गाने लग रहे हैं। चलिए और नाम शामिल कर रहे हैं, प्रकाश गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, धीरज गोस्वामी, मुस्कान गोस्वामी, नीतू गोस्वामी, सरोज गोस्वामी, दुर्गा गोस्वामी और इन सभी के नाम भी हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। बहरहाल सभी श्रोता वेट कर रहे हैं अपने नामों के शामिल करने का और हम भी वेट करते हैं आपके संदेश हमें मिलें, आपके लाइक्स हमें मिलें। मालदा स्ट्रीट से हैं मंजू सैन, अशोक जी सैन, राधा किशन जी, सोनिया शेखर जी सैन, चिंकी निर्मला जी हैं और जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी विपुल कांबड़े हैं, सत्यनारायण मंडोबरा, रामचंद्र टेलर, शांतिलाल चौबीसा, मित्र मंडल, भिंडर जिला उदयपुर के श्रोता हैं, तुलसीराम जी चौहान सूरजपोल से, गजेंद्र सिंह सारंग देवत, भव्यराज सिंह सारंग देवत, बुरकिया खुर्द बोहेड़ा से, उपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान बोहेड़ा चौहानों की हवेली से, गोपाल चौहान ठोकर चौराहा उदयपुर से, मनोज बागड़ी एडवोकेट महेश बागड़ी आदर्श नगर पहाड़ा से और श्रोता हैं विकास सिंह जयपुर से, कुशाल बागड़ी मन बागड़ी सेक्टर 14 से, ललित सिंह चौहान कांकरवा, हेमेंद्र चौधरी ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुर आयर से, उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयर कलाल बाटी से, इंद्र सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड से, दीपेश चौहान हाथीपोल से।

करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल से ये गाना हमको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में। और नाम शामिल करते चले, मुकेश जी चौहान बजरंगी भाई देबारी से, लाला भाई निमावत प्रताप नगर से, गोपाल भाई निमावत सुखेर से, राजू भाई खींची मादड़ी से, अंची निमावत देबारी से, तनिष्क चौहान सूरजपोल से, कालिका माता चौक उदयपुर के श्रोता गणेश नगर से हैं, महावीर जैन चित्तौड़ा, राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय माथुर, अक्षिता माथुर, आलिंद माथुर, बौरा गणेश जी के श्रोता हैं। बॉबी फिल्म के लिए लाइक मिले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी के, मुकेश वडारिया मामा जी, लाला राम जटोलिया सेंट्रल एरिया उदयपुर के श्रोता हैं। और एम बी कॉलेज कुमारों का भट्टा से मांगीलाल पुरबिया, पुष्पा रानी पुरबिया, मोती चौटा करजाली हाउस से माधवलाल सिल्लीगर, कुमारों का भट्टा से प्रजापति जौनी भाई कुल्लड़ वाले हैं, जय सालवी संतोष खतुरिया, यज्ञ सालवी दूधतलाई उदयपुर से, सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से ये हैं खतुरिया, कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा कियू, शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतुरिया, कामिया खतुरिया, विकास खतुरिया, भानु खतुरिया, हिताक्ष खतुरिया और रामपुरा से हैं नारायण सैन। बॉबी फिल्म के लिए लाइक मिला है। आप सभी का बहुत शुक्रिया करते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जिन श्रोताओं ने संदेश नहीं भेजे उन्हें वो प्रॉमिस करेंगे हमें अगली बार ज़रूर से अपने लाइक्स भेजेंगे और जो गाना पसंद हो उस पर उनके लाइक का हम इंतज़ार करेंगे। ये प्रोग्राम LCS की तरह ने व्हाट्सएप के बहाने आपने सुना रेडियो लीक सिटी पर। चलिए इसी के साथ ये गाना आप सुनिए और प्रोग्राम खत्म होता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आपने ट्यून किया है शहर का लोकप्रिय रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। सुबह के 11 बज चुके हैं और अब रेडियो सेट पर खुल चुकी है यादों की वो खिड़की, जहां गुजरे ज़माने के सुरों की ठंडी हवा सीधे आपके दिल को छू जाएगी।

हिंदी सिनेमा में संगीतकारों की जोड़ियां तो बहुत आईं, लेकिन एक ऐसी जोड़ी जिसने 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक बिना रुके बिना थके हिंदुस्तान को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज इस प्रोग्राम के पहले भाग में हमारा फोकस रहेगा उसी जोड़ी के लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर जी पर, जिनकी आज पुण्यतिथि है।

लक्ष्मीकांत जी बचपन संघर्ष में बीता और बचपन से मैंडोलिन बजाने का शौक रखते रहे और इसी शौक ने उन्हें प्यारे लाल जी से मिलाया। दोनों ने मिलकर संघर्ष किया और 1964 में आई फिल्म दोस्ती ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिला डाला। इस फिल्म के गानों में जो सादगी थी, जो मेलोडी थी, वो सीधे लक्ष्मी जी के दिल से निकली थी क्योंकि उन्होंने खुद भी ऐसे संघर्ष किया था। बहरहाल अगला गाना सुनते हैं। किंग ऑफ ढोलक कहे जाने वाले लक्ष्मीकांत जी, उनके गानों में जो रिदम होती थी वो दिल को छू जाती थी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की एक और सबसे बड़ी ताकत थी वक्त के साथ खुद को बदल देना। 60 और 70 के दशक में जहां उन्होंने रूहानी मेलोडियस म्यूजिक दिया, तो 80s तक आते आते तड़कते भड़कते संगीत को भी उन्होंने बहुत पॉपुलर कर दिया। तभी तो उनके गाने हर जनरेशन को पसंद आते हैं। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्यारे लाल जी के साथ मिलकर उन्होंने 2000 से ज़्यादा गाने बनाए जो आज भी अमर हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं वो गाना जो हर उस इंसान की आंख नम कर देता है जो अपने घर से दूर है।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी, यादों के झरोखों से। अब हम याद करेंगे एक ऐसे इंसान को जिसने पर्दे पर भोला बनकर हास्य बिखेरा और असल जिंदगी में लोगों के आंसू पोंछे। 25 मई की तारीख एक ऐसे स्टार के साथ जुड़ी है जिसे हम सिर्फ सुपरस्टार नहीं कह सकते, बेहतरीन अभिनेता, नेक दिल इंसान। आज पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता सुनील दत्त की।
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर।
4: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
3: पवन करे शोर।
4: हाँ

असली नाम बलराज दत्त। विभाजन के बाद परिवार पाकिस्तान से पंजाब आया, बहुत संघर्ष किया, बस कंडक्टर की नौकरी से लेकर रेडियो सिलोन पर आरजे बनने तक सफ़र उनका बेहद दिलचस्प रहा। पर 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। फिल्म में उन्होंने बिरजू का जो गुस्सैल विद्रोही किरदार निभाया, उसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म के सेट पर लगी आग से उन्होंने नरगिस जी की जान बचाई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी।

पसंद करने वाले कहते हैं कि सुनील दत्त की आंखों में जो सच्चाई थी वो आज के एक्टर्स में नहीं दिखती। उनके एक्सप्रेशन दिल जीत लेते हैं। उन्होंने एक तरफ जहां डाकू के किरदार निभाए तो भोले बनकर जो सादगी दिखाई उसने ये साबित कर दिया कि वो हर रोल में फिट थे।

सुनील दत्त सिर्फ फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो भी थे। उन्होंने अजंता आर्ट्स नाम का एक ग्रुप भी बनाया था जिसके बैनर तले वो अपनी टीम को लेकर बॉर्डर पर जाते थे और देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ परफॉर्म करते थे। उन्होंने शांति के लिए मुंबई से अमृतसर तक पैदल यात्रा की थी। कैंसर के मरीजों के लिए उन्होंने जो काम किया वो आज भी मिसाल है। आखिरी दिनों में उन्होंने अपने बेटे के साथ फिल्म मुन्ना भाई MBBS में काम किया था। पर्दे पर अपने सगे बेटे संजय दत्त को जब उन्होंने गले लगाया और वो जो जादू की झप्पी दी तो थिएटर में बैठा हर इंसान अपलक देखता ही रह गया, क्योंकि वो सिर्फ फिल्म का सीन नहीं था।

बल्कि एक पिता का अपने बेटे के लिए निश्चल प्यार था। आपको कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनवाते हैं, दत्त साहब को शत शत नमन करते हैं यादों के जरोखे से। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया उदयपुर, चलते हैं फिर मिलेंगे।

बुधवार सुबह 10 बजे 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर प्रोग्राम भूली हुई यादें, और यादों में कोई एक साल, उस साल की फिल्में, उस साल की फिल्मों के गाने, थोड़ी थोड़ी बातें और बहुत कुछ। जरूर सुनिए बुधवार सुबह 10 बजे प्रोग्राम भूली हुई यादें, ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
1: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप सभी रो घनो घनो स्वागत, घनो घनो अभिनंदन। आ है राजस्थानी गीतारू गोखड़ो।

अब एक ऐसो गानो जिकने सुनता ही थारो पैर थिरकण लाग जावेला और मन मयूर बन नाचण लागेला। गुंगटरी ओढ़ चुड़ले रिखन घाघरे रुखेर, तो तैयार हो जाओ सा, सुनो यू गानों।

आप सुन रहे हो राजस्थानी गीत डांसू सा जो गोखड़ो। और आप अब आर यो बताओ कि रसोई में काई बन रही हो सा दाल बाटी चूरमो। आज सोमवार रो दाने कल रविवार रे दान तो यो बनाई हो सकतो है। और बाजरे रो सोगरो होवे काचरे री चटनी होवे तो कई स्वाद आवे सा है ने। तो अब अगलो गानो सभी बहना और भाभियाँ रे वास्ते बजावा हाँ जो कदी कुएं पानी लावती ही कदी ऑफिस री फाइला संभाले है तो घर में मिठास भी भरे है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
6: मेरी गुड़िया की नाम।
7: पर दादी, आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
8: RBI कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: और अबे आज रे इन गोखड़ा कार्यक्रम आए आप याद करो सांवरिया ने और इन नखराले और रोमांटिक गाने रो आनंद उठाओ खमा घनी सा।

0: राजस्थानी लोकगीतों से सजा गोखड़ा भी आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज के मॉर्निंग लोकल विंडो का सफर पूरा होता है। ये है रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया।

0: है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से रिले कार्यक्रमों की श्रृंखला में यादों की महफिल।
2: ये सुरीली धड़कन, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ।

0: तो आइए सुनते हैं अगला गीत आए दिन बहार के फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
1: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि है अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वॉडवाल की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई बाल जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं, बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए, और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है। एक घंटा

कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहली बार पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी जिंदगी भागती जरूर है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है। ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं, और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफ़र। और सुरीला सफ़र का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6,000 गाने हैं, और उन 6,000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा। बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है, जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं। आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से, या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर, और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार हैं संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी, जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलासफी की व्याख्या करता है ये गीत। लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को। और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज़ हम आपके गीत बजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए।

उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है, और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा, ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है? और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है? बताइएगा जल्दी से, पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी, बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन की इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है। तो ज़रा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज़ कौन सी है। अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को गर्म किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए, असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है। और इतनी खूबसूरती के

साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता

कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़े इस धारा के साथ।
1: सुनिए, कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले,

0: कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का दराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 पर जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, ज़रूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए। और सुनिए ये गीत, अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, ज़रूर से बताइएगा।

आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता लिख रहा है, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठ कर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या

दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं, तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

0: दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया।

0: गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता

0: गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में है। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल

0: के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4थे स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

एहसान सहारों का मत ले, एहसान सहारों का मत ले, खुद अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना। तू रस्ते की हर ठोकर पो, तू रस्ते

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

0: हाथ में तकदीर लिए, जो हाथ में तकदीर लिए, तू सबका भाग बनाता जा, तू सबका भाग बनाता जा, तू हंसता जा, तू गाता जा।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत, आशा भोसले की आवाज़ में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और AR कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत ऐसे चंद तपन दिग्नाद राम तत थई राम तत थई।

लोडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन दे दे सगन लदादा किट झट झट झट झड़न मच सग सगन का किट झट किट सग सगन का जी सगन लदा साधा किट सग सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का है संगीत।

0: सखी सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी, स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को, सभी सखियों को, सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी, एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
1: जी,
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि, इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल, वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं। जी
2: बिल्कुल, आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं, जो एक
1: बिल्कुल
2: गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा ही होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका

0: हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी
2: ये तो गजब हुई गवा, बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे। जब

0: तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ
1: कहती तो ठीक हो तुम सब, अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू ये क्या कर डाला है?
2: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
1: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
3: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
3: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
1: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
4: हाँ हाँ पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। हाँ अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
0: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
3: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
1: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
1: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
4: हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण।
5: हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
1: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण।

0: हरे कृष्ण।
1: रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना? पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की मां, एक तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
3: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
1: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की मां, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
4: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
3: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
2: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
1: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
2: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
1: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
2: अच्छा।
1: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
2: ऐसा?
1: हरे कृष्ण।
5: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
1: अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
6: अरे अम्मा जी, हाँ? ये तो
2: क्या हुआ, बोलो तो।
6: अरे हुआ का,
2: अरे
6: बताओ का बताएं अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
1: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
1: और वो भी भाग गए
0: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं
1: बिल्कुल।
0: और

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और
1: हाँ,
0: पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया,
1: अब
0: देखो
1: तो
0: रूठा
1: मान ही
0: ना
1: गए
0: करो, अब तक
1: होंगे।
0: मान गए होंगे।
1: जी हाँ,
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं। तो
0: जी
1: इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता, शरीर
1: बिल्कुल
0: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और
1: हाँ।
0: फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को

0: को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
1: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
0: वो
1: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है
0: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
0: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
1: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात।
1: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ। कहते
0: हैं ना, जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
1: हाँ,
0: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
0: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा,
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
0: जी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है, जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं
1: घूमने
0: घूमने
1: जाना
0: जाना है।
1: ठीक है। तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल। और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह

0: गए, मैं बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला
1: बिल्कुल
0: जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों
1: बिल्कुल
0: के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती,
1: बिल्कुल
0: बड़ा अच्छा
1: लगता है कि
0: लगता
1: ये
0: है।
1: भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना, वो एक अलग होता है जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा
0: हाँ,
1: रहे होते हैं। जबकि जब हम घर में वो चीज़ वही चीज़ खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का अचार खुलता है, सारी
1: हाँ
0: खुशबू
1: बिल्कुल
0: हमारे तक आ जाती
1: जी
0: है।
1: हाँ। और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल। और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता
1: बहुत
0: है। और
1: अच्छा।
0: इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे
1: जी
0: होते
1: हाँ
0: हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या

0: लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
1: जी बिल्कुल। और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
0: बिल्कुल, सबके हिसाब से मिलना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो जो भी जा रहा है, हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
1: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
0: क्या
1: वो होता है? टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग।
0: सबसे पहला काम,
1: सबसे पहला काम। अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्य ध्यान, जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है। और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताइए, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
1: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये सही कहा।
1: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
0: जरूर
1: होना चाहिए।
0: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ओआरएस की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
0: बिल्कुल,
1: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और

0: बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी टकोर, मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
1: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
0: बहुत अच्छा है। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहाँ अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहाँ पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम
1: समय
0: कर सकते
1: भी बच
0: हैं।
1: जाएगा।
0: बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। पहली चीज़ तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का मौसम और वहाँ के भोजन, इनका
0: हाँ
1: आनंद जरूर लीजिए। जैसा
0: बिल्कुल
1: मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
0: बिल्कुल
1: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता
0: जी
1: है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई
0: ध्यान।
1: व्यवस्था करके,
0: बिल्कुल
1: अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर, बनाकर, या किसी ऐसी
0: जी
1: व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
1: जी
0: तो विधि एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना
1: बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब
1: अच्छा।
0: हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में, बोलते थे
1: हाँ,
0: हम, उस
1: सहूलियत
0: जगह
1: से
0: पे
1: एकदम
0: जाके
1: सही रखा
0: जी
1: रहता
0: रख जाता था। तो
1: था।
0: ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे, और
1: सही
0: वो
1: बात है,
0: समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता
1: बिल्कुल
0: है,
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत
1: बिल्कुल
0: बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही
1: बिल्कुल,
0: योजना से करो,
1: ताकि
0: बड़ा
1: आपका
0: आनंद
1: सफर
0: आएगा।
1: अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है, क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये मेरा भी पसंदीदा रहा है, ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है। और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ, बड़ा
1: अच्छा,
0: आनंद आता है।
1: सच में अच्छा लगता होगा, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल
0: जी
1: जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत
1: स्वाद आ जाता
0: आनंद
1: है।
0: आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं पे
1: अरे
0: मजा
1: बिल्कुल।
0: अलग ही आ जाता है। तो जब हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो
1: अच्छा।
0: घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए, मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो और वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छान कर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आँच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए, और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप

0: गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं ये स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा
1: बहुत अच्छा लगेगा। इतना आइसक्रीम जैसा गले में, सच में
0: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देख कर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो आरती
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है, हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए,
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है, विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना

0: नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से, विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के
1: जरूर
0: दौर में।
1: जरूर।
0: अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक ग्रंथि होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी,
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम

0: सिस्टम बिगड़ता है, और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हटके सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते होंगे।
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
1: जी
0: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी,
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी,
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडी में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट

0: होता है, हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग. प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है.
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है.
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम
0: रेंज के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है. सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए.
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं.
1: अच्छा,
0: हाँ ठीक है. और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं.
1: जी, जी जी.
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए.
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा.
1: जी जी. तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा.
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार.
0: काला बाजार
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैसे नींद आएगी?

0: गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर लें, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
0: जी
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया, तो ट्रीटमेंट या जो
0: चिकित्सा
1: चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो,
0: हो जाती है।
1: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है
1: चित्ररेखा।
0: ये,
1: हाँ,
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत
0: लेकिन
1: है।
0: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है आग बबूला होना।
0: जी जी,
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ही है।

0: है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है
1: जी जी,
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
1: जी।
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि

0: सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो अलाना फलाना,
1: सारी विषैली चीजें,
0: हाँ,
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं
1: जी।
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना।
1: पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी
0: एक
1: है,
0: इंडिकेशन होता है
1: एक
0: उसमें।
1: इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी
1: आयोडीन का
0: मेहनत करने पे ही वो थक जाता है।
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट,
0: जी
1: इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके, और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल।
0: जी
1: आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर

0: उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
1: मायूस।
0: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज़ पे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज़ बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है,
1: जी
0: ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
1: जी
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का, मतलब आहार का, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो तो अमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसम नहीं, एक जो फल
0: मौसमी
1: है वो खाना
0: खाना,
1: चाहिए।
0: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए, इससे जब ज़्यादा आप पानी पियोगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूँगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊँगी?
1: बहुत प्रेशर
0: नहीं।
1: पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, टी थ्री किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस,
1: क्या बात
0: इसीलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र
1: है।
0: किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
0: ज़रूर।
1: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
0: उतना ही है।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो
0: बड़ी
1: चाइनीज़ फूड में
0: खतरनाक
1: ज़्यादा
0: है।
1: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने।
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
0: हाँ, कम
1: इतना तो
0: कर
1: कर
0: दीजिए,
1: सकते।
0: मैं
1: जी
0: ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल।
0: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में, उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो, बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
1: जी
0: मन
1: जी
0: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज़।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज़ में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नज़दीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित कर

0: करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, FM बैंड 101.9 MHz पर। यह है FM रेडियो लेक सिटी। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। युवा साथी अब सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का समय है, घड़ी में बजे हैं 5, यानी टाइम हुआ है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का। और आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित। दोस्तों 8 जून 2026 यह वो आने वाली तारीख है जिस दिन हमारी आपकी हम सबकी आकाशवाणी के 90 वर्षों के इतिहास को पूरे जोर शोर से पूरे देश में मनाएंगे। लेकिन हम तो युवा हैं और हम पहले से ही तैयारियों में लग जाते हैं, और इसी तैयारी का हिस्सा है आज की काव्य गोष्ठी, जिसे आपके लिए लेकर आए हैं युवा कवि और कवियत्री शुभम जैन पराग, माधुरी शर्मा, आनंद प्रकाश जैन, वंशिका शर्मा और अमन नियति। इससे पहले कि हम आपको यह काव्य गोष्ठी सुनवाएं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं शानदार से गीत के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो दोस्तों अब समय है काव्य गोष्ठी का, तो लीजिए सुनते हैं काव्य गोष्ठी।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं शुभम जैन और आज की हमारी काव्य गोष्ठी जो है वो आकाशवाणी के जो हमारी 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम 8 जून को आकाशवाणी की 90 वर्ष होंगे, इस उपलक्ष्य में हम आकाशवाणी के सफ़र को लेकर एक काव्य गोष्ठी आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी श्रीमती माधुरी जी शर्मा, वंशिका जी शर्मा, अमन जी न्याति और आनंद प्रकाश जी जैन। ये सभी आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफ़र पर कुछ कविताएं आपके सामने पेश करेंगे और उसके अलावा इनकी स्वरचित कुछ कविताएं भी आपके सामने पेश करेंगे। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती माधुरी जी शर्मा को, वे अपनी रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें।
3: बहुत बहुत आभार, आभार शुभम जी का, आभार आकाशवाणी का जिन्होंने हमें इस अवसर पर बुलाया और आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कविताओं को आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ते हैं और कई ऐसी कविताएं हैं जो बेसब्री से आप तक जुड़ने का इंतज़ार करती है और ये ऐसे ही कुछ पल होते हैं जो आकाशवाणी हमें देता है, उपलब्ध करवाता है, जिससे हम हमारी जनता से जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी को सर्वविदित है, आकाशवाणी के 90 वर्ष 8 जून को पूर्ण होने वाले हैं। इस उपलक्ष्य में रेडियो की आवाज़ से जुड़ी ही एक कविता है, उसके माध्यम से मैं अपनी कविताओं की श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है रेडियो की आवाज़।
2: स्वागत है।
3: एक छोटा सा डिब्बा पर दुनिया इसकी बड़ी, बिन देखे ही दिखा दे हर रंग हर घड़ी।
2: क्या बात है।
3: कभी गीतों की सरगम, कभी खबरों की बात, कभी कहानियों का जादू, कभी हंसी की सौगात।
2: बहुत बढ़िया।
3: अंधेरी रातों में साथी, सफर में हम सफर बन जाए, जब कोई पास न हो तो रेडियो दिल बहलाए।
2: वाह।
3: न चेहरा न कोई सूरत, फिर भी अपनापन लाए, सिर्फ आवाज के सहारे दिल से दिल मिल जाए।
2: क्या बात है।
3: पुराना होकर भी नया लगे, हर युग में साथ निभाए, रेडियो की ये मधुर धुन सदा मन को भाए।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
4: बहुत अच्छे।
3: आकाशवाणी ने जो हमें दिया है ये सिर्फ एक आवाज

0: नहीं है, आपके जज्बात हैं जो हमको लोगों तक रूबरू होने का अवसर मिलता है। और आकाशवाणी की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर हर बात सत्य पर आधारित ही बताई जाती है। और इसी शीर्षक से जुड़ी एक मेरी अन्य रचना है जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ।
1: बहुत खूब, स्वागत।
0: सच मैं सच हूँ, सही हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ। मैं सच हूँ, सही हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ। मैं झूठ नहीं जो चुपचाप मुस्कुराता हूँ। मैं पहाड़ सा खड़ा दुनिया के सामने, मैं झूठ के बादलों सा नहीं जो छिप जाता हूँ।
1: बहुत बढ़िया।
0: मगर बादलों का सीना चीरकर मैं रोशनी जग को दिखलाता हूँ। मैं वो बीज हूँ जो मिट्टी में दफन हो जाऊं, फिर बनकर विशाल वृक्ष हकीकत भी दिखलाता हूँ। मैं परेशान भी होता हूँ, हैरान भी होता हूँ, झूठ के सामने थक कर चूर भी होता हूँ, फिर उठता हूँ विश्वास के साथ। पैरों में पड़े हैं छाले, मानो मगर मैं फूल भी होता हूँ। माना कि लड़ते लड़ते हारा सा लगता हूँ, यह सत्य अपनी परिभाषा दे रहा है कि माना कि लड़ते लड़ते हारा सा लगता हूँ, मगर जीत के बहुत मशहूर भी होता हूँ।
2: अद्भुत।
0: मैं कई बार हिल जाता हूँ, मैं कई बार हिल जाता हूँ आंधियों में, मगर मैं फिर भी मजबूत इमारत सा नजर आता हूँ।
1: क्या बात है।
0: मुझे मिटाने की कोशिश करता है झूठ, मगर मुझे मिटाने की कोशिश करता है झूठ, मगर मैं सच हूँ, मरकर भी जी जाता हूँ। मैं सच हूँ, मरकर भी जी जाता हूँ। मैं वो आईना हूँ जिसके टुकड़े झूठ करता है हजार, मगर मैं कौन? आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ शक्ति की परिभाषा है। मैं वो आईना हूँ जिसके टुकड़े झूठ करता है हजार, मगर मैं हर टुकड़े में सूरत सच की ही दिखलाता हूँ।
2: क्या खूब लिखा।
0: मैं हर टुकड़े में सूरत सच की ही दिखलाता हूँ। झूठ मुझ पर पर्दा डाले, मगर मैं सत्य हूँ, अंधेरे में भी नजर आता हूँ, अंधेरे में भी नजर आता
1: हूँ।
2: बहुत ही सुंदर,
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत बहुत आभार आप सभी का। इन्हीं काव्य गोष्ठी की श्रृंखला में अगली मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। गर्मी का मौसम है और हम सभी गर्मी से परेशान रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी पर कुछ लिख दिया जाए।
1: बिल्कुल, नौतपा भी आने वाला है।
0: जी बिल्कुल,
1: स्वागत है।
0: सूरज आग बरसाता है, धरती तपती जाती है, गर्मी का है ये तेज मौसम सबको खूब सताता है। सूख गए हैं ताल तलैया, प्यासे पंछी डोल रहे हैं, सूख गए हैं ताल तलैया, प्यासे पंछी डोल रहे हैं, पेड़ों की ठंडी छाया में राहगीर भी बोल रहे हैं, थोड़ी ठंडी हवा तो आए, मन को थोड़ा चैन मिले।
1: अरे वाह।
0: आम तरबूज और शिकंजी से गर्मी में भी सुकून मिले।
1: क्या बात।
0: बच्चे छुट्टियां मनाते हैं, नदियों में जाकर नहाते हैं, शाम ढले जब ठंडक आती, सबके चेहरे मुस्कुराते हैं। गर्मी चाहे कितनी आए, गर्मी चाहे कितनी आए, हर मौसम की अपनी बात निराली, धूप के बादल छटते ही बरसात देती है सौगात निराली। बरसात देती है सौगात निराली। यहाँ पर गर्मी से परेशान नहीं होना है, यानी हम हमेशा हर मौसम का लुफ्त उठाए, ऐसा ये संदेश ये मेरी रचना देती है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी अधिक मास का महीना चल रहा है, और अधिक का मतलब होता है अत्यधिक, तो शायद मेरी रचना अत्यधिक हो सकती है लेकिन आपके कानों को सुकून पहुंचाएगी, ऐसा मैं सोच रही
1: हूँ।
0: कल मैं अनायास जगदीश मंदिर गई थी और मैंने वहां पर जाकर कुछ देखा तो मन किया कि मैं अपनी रचना को इसमें ढालूं। जगदीश मंदिर की घंटियों में भक्ति का संगीत बसा है, जगदीश मंदिर की घंटियों में भक्ति का संगीत बसा है, हर पत्थर में जैसे कान्हा का आशीष रचा है।
1: बहुत क्या बात।
0: ऊंचे शिखरों से झड़ती है श्रद्धा की उजियारी, ऊंचे शिखरों से झड़ती है श्रद्धा की उजियारी, मेवाड़ की इस धरती पर छवि लगे सबसे प्यारी। संगमरमर की सीढ़ियों पर इतिहास मुस्कुराता है, संगमरमर की सीढ़ियों पर इतिहास मुस्कुराता है, हर भक्त यहाँ आकर मन का दीप जलाता है। दीवारों की नक्काशी में संस्कृति बोल उठे, भक्ति के हर स्वर में जैसे श्री हरि डोल उठे। आरती की लो जब नभ तक अपना प्रकाश फैलाए, मन मोर बन कान्हा कान्हा रास रचाए, घंटों की गूंज में मिलता अद्भुत सुकून निराला है, जगदीश मंदिर लगता जैसे वृंदावन का शिवाला है। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी में यह मंदिर मुकुट समान है, जहाँ हर विश्वास में, जहाँ हर श्वास में श्री हरि का गुणगान है। जो एक बार यहाँ आया वो भावों में खो जाए, जो एक बार यहाँ आया वो भावों में खो जाए, जगदीश मंदिर की महिमा युगो युगो तक अमर हो जाए, जगदीश मंदिर की महिमा युगो युगो तक अमर हो जाए।
1: बहुत बढ़िया।
0: और मेरी एक अंतिम रचना है जिसकी कुछ पंक्तियां मैं अपने श्रोताओं को

0: समर्पित करूंगी, क्योंकि हम हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन एक ऐसा कार्य जो शत प्रतिशत किया जाना चाहिए और हम कई बार उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरे प्यासे जो पक्षी है वो कुछ कह रहे हैं, प्यासे पंखों की पुकार। जलती धूप में तड़प रहे हैं, जलती धूप में तड़प रहे हैं नन्हे पंछी बेचारे, सूखी धरती सूने आंगन कहाँ जाए ये बेचारे। एक कटोरी जल रख देना थोड़ी सी बस छांव के साथ, शायद कोई प्यासा पंछी दुआ दे जाए तुम्हारे हाथ।
1: क्या पुकार
2: है, बहुत बढ़िया।
0: उनकी चहक में रख बसता है उनकी उड़ान में आस, इनकी प्यास बुझानी ही है सबसे सुंदर उपवास।
2: क्या बात,
0: क्योंकि अधिक मास में काफी लोग उपवास रख रहे हैं, तो इस पंक्ति को उससे जोड़ा गया है कि इनकी प्यास बुझानी ही है सबसे सुंदर उपवास। ना सोना ना चांदी मांगे ना कोई बड़ा उपहार, ना सोना ना चांदी मांगे ना कोई बड़ा उपहार, बस गर्मी में थोड़ा पानी और थोड़ा सा प्यार।
3: क्या बात,
2: क्या बात।
0: आओ मिलकर नेक काम करें, धरती का मान बढ़ाए, छत छत हर घर हर आंगन में पक्षियों के लिए एक परिंदा लगाए, पक्षियों के लिए एक परिंदा लगाए।
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बढ़िया रचनाएं पढ़ी आपने माधुरी जी,
0: शुक्रिया।
2: आपकी रचनाओं में पंक्षियों के लिए, प्यासे पंक्षियों के लिए जो उनका दर्द देखने को मिलता है कि आजकल लोग कई जगह दूसरी जगह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर वो इन प्यासे पंक्षियों को, उनकी पुकार को सुनकर अगर पानी रखें, उसके बाद आपने जो अध्यात्म और धर्म से इसमें जोड़ा है, साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफ़र पर भी जो आपने सुनाई है, काफ़ी अच्छी रचनाएं थी आपकी। इसी के साथ अब मैं हमारी अगली कवित्री वंशिका शर्मा जी को आप सभी के सामने आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपनी रचनाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद शुभम जी। नमस्कार श्रोताओं, मैं वंशिका शर्मा कविताएं, गजलें, पाक कला, घूमना फिरना और सबसे बढ़कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना मेरी रुचियों में शामिल है। शब्दों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना मुझे सुकून देता है और यही प्रयास रहता है कि मेरी रचनाएं किसी के दिल को छू जाए।
2: क्या बात है।
4: आज मैं अपनी कुछ प्रस्तुतियां आपके समक्ष लेकर आई हूं, इस आशा के साथ कि आप सभी उसे आनंदमय तरीके से सुनेंगे।
0: अवश्य।
2: स्वागत है।
4: आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, तो मेरे मन में सिर्फ एक माध्यम की नहीं बल्कि उन अनगिनत भावनाओं की तस्वीर उभरती है जिन्हें रेडियो में वर्षों तक अपने स्वर में संजोया है। रेडियो केवल समाचार या गीतों का माध्यम नहीं रहा, यह लोगों के जीवन का साथी रहा है। और जब इन शब्दों के साथ की दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। इन्हीं भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोने का एक छोटा सा प्रयास, प्रस्तुत है मेरी एक मौलिक कविता, रेडियो आवाजों का घर।
2: स्वागत है।
0: स्वागत।
4: न जाने कितने घरों में एक छोटा सा डिब्बा धड़कता था जिसे दुनिया रेडियो कहती थी, पर मेरे लिए वो घर का एक सदस्य हुआ करता था। सुबह की आरती में उसकी आवाज, दोपहर की खबरों में उसका विश्वास और रात के सन्नाटों में धीमी गीतों सा उसका साथ। वो केवल यंत्र नहीं था, कई अधूरी मुस्कानों की वजह था। जब दूर शहर में कोई अपना होता तो उसकी बोली में घर का रास्ता सुनाई देता था। आकाशवाणी, तुमने सिर्फ कार्यक्रम नहीं सुनाए, तुमने रिश्ते निभाए हैं। कभी किसान की उम्मीद बने, कभी सैनिक के मन का साहस, कभी किसी माँ की तन्हाई में बेटे की याद जैसे ठहर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
4: आज भी याद है वो एंटीना घुमाने की कोशिशें, थोड़ी खर के बाद अचानक साफ होती आवाज।
2: क्या बात?
4: जैसे जिंदगी कह रही हो, थोड़ा धैर्य रखो, सुनाई सब देगा।
3: अरे
2: वाह,
0: बहुत खूब।
4: रेडियो ने हमें सिखाया कि चेहरों से ज्यादा आवाजों में सच्चाई होती है। मानते हैं ना आप ये बात?
0: बिल्कुल।
4: यहाँ लोग दिखते नहीं थे पर दिल तक पहुंच जाते थे। कितनी अजीब बात है ना, आज की दुनिया में स्क्रीन सिमट गई है पर सुकून अब भी उसी पुरानी आवाज में मिलता है।
2: ये बात तो बहुत सही कही आपने।
4: क्योंकि रेडियो केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वो दादी की कहानी है, पिता की आदत है, माँ की रसोई का संगीत है और मेरे बचपन की सबसे सच्ची याद है। जो लोग इससे जुड़े हैं वो सिर्फ उद्घोषक नहीं, भावनाओं के रखवाले हैं। उन्हें अपनी आवाजों से कितनों के अकेलेपन को सहलाया।

0: किया है।
1: क्या बात,
2: बिल्कुल सही।
1: बहुत सही, बहुत
0: जब
1: सही।
0: आकाशवाणी 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर रही है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना उम्र के इस पड़ाव पर भी उतना ही अपनापन दे रहा है। धन्यवाद रेडियो, तुमने हमें बताया कि आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती, ये बस यादें बनकर दिल में बस जाती है।
2: बहुत ही सुंदर
3: रचना,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। इसी समक्ष इस क्रम में मैं एक दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की आवाज है जो हर दिन समाज की कई कड़वी सच्चाइयों से लड़ रही है। आज भी कई दहेज के नाम पर बेटियों के सपने जलाए जाते हैं, कहीं उनकी चुप्पी को संस्कार कह दिया जाता है, तो कहीं अनेक आत्मसम्मान को समझौते का दूसरा नाम बना दिया जाता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लड़कियों को उड़ने के सपने तो दिखाए जाते हैं, लेकिन उनके पंखों पर समाज के डर, ताने, बंधन बांध दिए जाते हैं।
1: बहुत सी
2: कटु सत्य,
0: पर एक सत्य यह भी है कि नारी केवल सहने के लिए नहीं बनी है। वह पानी जैसी शीतल है तो समय आने पर माँ दुर्गा और माँ काली जैसा साहस भी रखती है।
1: क्या बात।
0: इन्हीं भावनाओं, संघर्षों और आत्मसम्मान की लौ को अपने शब्दों में पिरोने का एक प्रयास आपके समक्ष लेकर आई हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, सिर्फ एक नाम नहीं, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना का जीवंत एहसास हूँ। मैं सूरजमुखी भी हूँ जो हर अंधेरे के बाद रोशनी की ओर मुड़ना जानती है, और मैं पानी की शीतलता भी हूँ जो टूटे मन को चुपचाप सुकून दे जाती है।
1: क्या बात।
0: पर याद रखना, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, समय जब विपरीत हो जाए तो मैं माँ काली का साहस भी हूँ और दुर्गा का स्वरूप भी हूँ।
3: बहुत बहुत, बहुत।
0: मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मुझे बचाने और कोई नहीं आएगा, ये बात मैंने अब समझ ली है। अपनी इज्जत की चौखट पर पहला पहरा मुझे खुद बनाना होगा, क्योंकि आत्मसम्मान किसी उपहार में नहीं मिलता, आत्मसम्मान किसी उपहार में नहीं मिलता, उसे अपने हौसलों से कमाना पड़ता है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे समाज कहता रहा, धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, इतने बड़े सपने मत देखो, लेकिन अब मैंने अपने सपनों की आवाज सुन ली है, अब मैं उड़ना किसी के डर के मोहताज नहीं है। दहेज के लालच में जो रिश्ते इंसानियत भूल जाए, दहेज के लालच में जो रिश्ते इंसानियत भूल जाए, उन दरवाजों से सम्मान के साथ लौट आना ही बेहतर है।
3: बहुत,
0: क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं, वो दो घरों की रौनक होती है, जिस घर में उसका सम्मान न हो रुक जाना चाहिए। हर लड़की को पढ़ना होगा, खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि सक्षम हाथों में ही सुरक्षित भविष्य होता है।
1: क्या बात।
0: तुम सिर्फ किसी की बेटी नहीं, किसी का कल हो, यह बात सबको याद रखना चाहिए। एक लड़की सिर्फ लड़की, एक जीव नहीं, वह दो घरों की उजियारी है। तुम सिर्फ किसी की बेटी नहीं, किसी का कल हो, तुम्हारी शिक्षा सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं, पूरे समाज की ताकत है। और मेरा युवा पीढ़ी से बस इतना कहना है, प्रेम करो पर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो, प्रेम करो पर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो, रिश्ते निभाओ, रिश्ते निभाओ पर अपनी पहचान खोकर नहीं। नारी होना कमजोरी नहीं, जीवन को जन्म देने की शक्ति है। और जो स्वयं टूट कर भी दूसरों को संभाल ले, जो स्वयं टूट कर भी दूसरों को संभाल ले, उससे अधिक शक्तिशाली कौन, बताओ कौन,
2: नारी।
0: तो उठो, अपने भीतर की रोशनी पहचानो, तुम सिर्फ एक आईने में दिखता चेहरा नहीं, तुम एक विचार हो, एक शक्ति हो, एक पूरा संसार हो। मैं नारी हूँ, कोमल भी, प्रखर भी, शीतल भी, अग्नि भी। मैं नारी हूँ, कोमल भी, प्रखर भी, शीतल भी, अग्नि भी। और बात जब आत्मसम्मान की हो तो मैं अपने लिए लड़ना भी जानती हूँ।
2: बहुत बहुत स्त्रीत्व बोध को आपने फिर से लोगों को जागरूक किया। ऐसी कई स्त्रियां होंगी जो सिर्फ अपने स्त्री होने पर शर्मिंदा महसूस करती है, क्योंकि कई बार ऐसी यातनाओं से वो गुजरती है, लेकिन ये कविता वाकई में एक माध्यम बनेगी, उनको फिर से खुद से प्रेम करना सिखाएगी।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आश्वासन के साथ मैं अपनी एक दूसरी कविता आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। हमने बात की उस पल की जहाँ लड़कियों का आत्मसम्मान की तरफ सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, अब कुछ कोमल क्षण आपके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ।
2: स्वागत है।
0: आज के समय में जहाँ रिश्ते अक्सर दिखावे, शर्तों और स्वार्थ में उलझ जाते हैं, वही मन कहीं ना कहीं उस निर्मल प्रेम को खोजता है जो राधा और कृष्ण की भक्ति जैसा पवित्र हो। एक स्त्री का कोमल हृदय संसार की चमक से अधिक अपने

0: प्रिय, स्नेह, सम्मान और अपनापन चाहता है। वह ऐसा साथ चाहती है जिसे उसकी खामोशी भी समझी जाए और उसका प्रेम बंधन शांति बन जाए। मेरा नाम वंशिका का अर्थ भी बांसुरी से जुड़ा हुआ है। मेरे नाम का अर्थ भी बांसुरी से जुड़ा हुआ है और शायद इसी कारण मेरे मन में प्रेम की अनुभूति हमेशा मोहन की बांसुरी की मधुर धुन जैसी रही है, धीमी, पवित्र और आत्मा को छू लेने वाली।
1: बहुत खूब।
0: आइए सुनाती हूँ आपको एक और कविता, मोहन की बांसुरी। मैं प्रेम में कोई महल नहीं चाहती, न सोने के गहनों का भार, मैं तो बस तुम्हारी बातों में अपना नाम ढूंढ लेना चाहती हूँ। मैं उस राधा सी प्रीत चाहती हूँ जहाँ मिलन से ज्यादा मन का जुड़ना पवित्र हो, जहाँ स्पर्श से पहले आत्माएं एक दूसरे को महसूस करें।
1: बहुत खूब।
0: मैं संसार के मुंह से परे एक ऐसा प्रेम चाहती हूँ जो शोर में नहीं शांति में सुनाई दे, जैसे दूर कहीं सांझ ढले, दूर कहीं सांझ ढले मोहन की बांसुरी बज उठे और मन बिना कहे उस ओर खींचता चला जाए।
2: क्या बात।
0: लोग कहते हैं प्रेम पाने का नाम है, मैंने भी यही सुना था। लोग कहते हैं प्रेम पाने का नाम है, पर मैं तो तुमसे खोकर भी खुद को पा लेना चाहती हूँ। मैं खोकर भी तुम्हें पा लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब दुनिया मुझे समझ पाए, मैं चाहती हूँ कि जब दुनिया मुझे न समझ पाए तब तुम्हारी आंखें मेरी खामोशी पढ़ें। जब मैं थक जाऊँ दिखावे की भरी दुनिया से, जब मैं थक जाऊँ दिखावे की भरी दुनिया से, तब तुम्हारे शब्द मेरे माथे पर रखे शीतल जैसे लगने लगे। मैं ऐसा प्रेम नहीं चाहती जो हर किसी को दिखाना पड़े, बिल्कुल नहीं। ऐसा प्रेम बिल्कुल नहीं चाहती जो किसी को दिखाना पड़े। मुझे तो वो रिश्ता चाहिए जो प्रार्थना की तरह पवित्र हो और सांसों की तरह हर पल साथ रहे। तुम मेरे जीवन में कृष्ण की उस बांसुरी जैसे आना, तुम मेरे जीवन में कृष्ण की उस बांसुरी जैसे आना जिसकी धुन भीड़ में भी राधा को सुनाई दे जाती है। और शायद इसीलिए मेरे नाम में भी एक अधूरी कहानी छुपी है, वंशिका। मानो किसी ने मुझे बांसुरी की आत्मा से रचा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेम तुम्हारे अहंकार को नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा प्रेम तुम्हारे अहंकार को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छुए, तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें समझने आए। क्योंकि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, वो मन को मुक्त करता है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ जीवन नहीं, एक शांति जीना चाहती हूँ जहाँ शब्द कम पड़ जाए और भावनाएं प्रार्थना बन जाए। इसी के अंतिम पड़ाव में मेरे कुछ आखिरी बोल आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।
1: स्वागत
2: है। स्वागत है।
0: सुनिएगा नहीं, इसे समझिएगा। अगर कभी इस जन्म की भीड़ में हम बिछड़ जाएं तो अगली बार, अगर कभी इस जन्म की भीड़ में हम बिछड़ जाएं तो अगली बार तुम मुझे पहचान लेना, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी धीमे से मोहन की बांसुरी सुनती हुई एक लड़की के रूप में जिसका नाम होगा वंशिका। बांसुरी की आवाज। धन्यवाद।
3: आपने जो जिक्र किया है इश्क हकीकी यानी दिव्य प्रेम का, उसकी अनुभूतियां महसूस हो पा रही है। बहुत सुंदर।
0: बहुत शुक्रिया।
2: बहुत अच्छी रचना है।
1: आपने ये रचना सुनाई तो मेरा भी मन कह रहा कि मैं भी अपने काना के लिए कुछ कह दूं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज मैं राधा हूँ तेरी, कल मीरा भी बन जाऊंगी। चंचल से इन होठों से बन माधुरी गीत तेरे गाऊंगी। तू जितना मुझे छलेगा मैं उतनी ही छली जाऊंगी। तू सोएगा रतिया में, मैं खटिया तेरी बन जाऊंगी।
0: वाह।
1: तू गाएगा फसाने में, तान तेरी बन जाऊंगी। तू मुरली अगर बजाएगा, मैं तान तेरी बन जाऊंगी। तू नाचने लगेगा गोपियों संग, मैं फिर से तेरी राधा बन जाऊंगी।
2: बहुत खूबसूरत। आपने जो रचनाएं पढ़ी वंशिका जी आकाशवाणी पर, उसके बाद आपने जो एक स्त्री को किस तरीके से सबल बनना है उस पर आपने बताया, और उसके बाद आपने जो स्त्री प्रेम पर रचनाएं पढ़ी, वाकई बहुत सुंदर रचनाएं थी। इसी के साथ में अब हमारे अगले साथी आनंद प्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आनंद प्रकाश जैन जी।
3: धन्यवाद शुभम जी। श्रोतागणों, मेरा नाम आनंद प्रकाश जैन है और आकाशवाणी पर 3 बार पहले रिकॉर्डिंग हो चुकी है और आप सभी का काफ़ी प्रेम मिला, तो इस बार फिर से अवसर दिया है 90 वर्ष के सफ़र के पूर्ण होने के अवसर पर, तो मैं अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूं। उससे पहले मेवाड़ की इस धरती पर बैठे हैं तो चाहता हूं कि राजस्थानी में 4 पंक्तियों से अपना इंट्रोडक्शन दूं। तो ये कि कविता लिखूँ, गीत लिखूँ, शायरी मन पसंद, हंसतो लिखूँ, रोतो लिखूँ, पतझड़ और बसंत।
2: क्या
3: कुछ मारी। धन्यवाद। कुछ

0: मारी कुछ थाणी लिखूं जा देखी वा कहानी लिखूं कुछ मारी कुछ थाणी लिखूं जा देखी वा कहानी लिखूं राणा प्रताप री धरती रोज देखूं नाम मारो आनंद।
1: आनंद आ गया इसको सुनके।
0: धन्यवाद।
1: क्या बात।
0: और अब आते हैं उस रचना की तरफ जो कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर है, हम सभी का एक कह सकते हैं कि बचपन और पूरे भारत का जीवन उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो उस रचना की तरफ बढ़ते हैं जिसकी रचना का शीर्षक रखा है युग युग तक गूंजे आकाशवाणी।
1: क्या बात है।
0: तो यह है कि वक्त बीता लोग बदले और बदले सब साज, वक्त बीता लोग बदले और बदले सब साज, 90 वर्षों से गूंज रही है आकाशवाणी की आवाज।
2: बहुत
1: क्या बात है।
0: 15 अगस्त 1947 को जब जग अभी अलसाया था, घर घर तक आजादी का संदेश आकाशवाणी ने पहुंचाया था।
1: क्या बात।
0: हर त्योहार हर खुशी और गम में सच्चा हम सफर बना है, हर त्योहार हर खुशी और गम में सच्चा हम सफर बना है, विविध भारती के सुरों ने जन जन का मनोरंजन बुना है। जयमाला ने सैनिकों की हृदय वेदना को साझा किया है, जयमाला ने सैनिकों की हृदय वेदना को साझा किया है, मनोरंजन की सुवास छिड़क कर तन मन को ताजा किया है।
1: क्या बात है।
0: भूले बिसरे गीत पिटारा छाया गीत और संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत पिटारा छाया गीत और संगीत सरिता, हवा महल की नाटी का संग भारत का जीवन बीता।
1: क्या बात है।
0: दिन भर का श्रम जब थम जाता समाचारों की बेला आई, देश दुनिया की खबर जानने आकाशवाणी फिर याद आई।
2: क्या बात है।
0: किसान वाणी ने कहा राम राम सा, किसान वाणी ने कहा राम राम सा, खेत बीज मौसम जान लो, गांवों में बसता भारत सारा, विशेषज्ञों की सलाहें मान लो।
3: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: शुक्रिया। युववाणी में सुनो सभी मिल क्या कहता है देश का युवा, युववाणी में सुनो सभी मिल क्या कहता है देश का युवा, क्या गुजरी है जहन पे उसके प्रेम प्रसंगों में क्या क्या हुआ। सहेलियों की बातें मनहर पत्रों की सौगात मिलेगी, माता बहनों की कला सुगंध सखी सहेली में बात खुलेगी।
1: क्या बात।
0: मेवाड़ी ठाठ गैर गौरी पधारो मारे देश बालम जी, जिलों के शहर से उठती धुन में मेवाड़ बस्ती मेवाड़ की संस्कृति जी, रेडियो ट्रांजिस्टर एफएम डिजिटल सफर बहुत लंबा किया है, रेडियो ट्रांजिस्टर एफएम डिजिटल सफर बहुत लंबा किया है, मिट्टी से उठती आवाज बनकर लोक संस्कृति का संरक्षण किया है, वीणा संतूर शहनाई सारंगी हारमोनियम की धुन में खो जाओ, वीणा संतूर शहनाई सारंगी हारमोनियम की धुन में खो जाओ, माँ भारती की गोद में थमकर शास्त्रीय संगीत सुनकर सो जाओ। जितने वर्ष बीते कम रहे, जितने वर्ष बीते कम रहे, जनमन का विश्वास अनूठा है, संकट के हर कठिन क्षणों में भी श्रोता से रिश्ता अटूट रहा है। अंतिम दो पंक्तियां इस रचना की कि आवाज से आवाम को जोड़ना ये अखंड भारत की मिसाल है, आवाज से आवाम को जोड़ना ये अखंड भारत की मिसाल है, युग युग तक गूंजे आकाशवाणी भारत का ये गौरव गान है, भारत का ये गौरव गान
2: है।
0: बहुत शुक्रिया। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि युववाणी इस कार्यक्रम का नाम है और मैं खुद युवा हूँ और युवा वय में प्रेम प्रसंग आदि हिलोरे मारते हैं, तो उन सब को आधार बनाकर कुछ रचना है आपके समक्ष प्रस्तुत है। और जैसा कि हम नॉस्टैल्जिक फील के अंदर वो देखते हैं ना कि खतों का प्रेम प्रसंगों में बहुत अहम
1: योगदान
0: रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि वैसी चीजें होती रहे, तो कुछ कुछ चीजें करते हैं। तो खत
1: बिल्कुल,
0: के
1: बिल्कुल।
0: तो जो खत है उसके लिए है कि रखा जाएगा एहतियातन खजाने सा, रखा जाएगा एहतियातन खजाने सा, साथ तुम्हारे ये कितना वक्त अकेले बिताएगा, रखा जाएगा एहतियातन खजाने सा, साथ तुम्हारे ये कितना वक्त अकेले बिताएगा, जलन होती है इस खत से खुश नसीब तुम्हारे हाथों छुआ जाएगा।
1: क्या बात।
3: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। अब कुछ खत अनभेजे रह जाते हैं, तो उसी से संबंधित ये रचना है कि लिफाफा बंद खत। तो
1: स्वागत है।
0: शुक्रिया। दिल के रिश्ते जब एक दिन बेवजह टूट जाते हैं, कुछ लिफाफा बंद खत भी बिन पढ़े छूट जाते हैं, रुसवाई से पहले दिखते नहीं पर धागे उधड़ने लगते हैं, एक दूजे की बाहों में दिए वादे बेवजह टूट जाते हैं।

0: जिन हिस्सों में उनकी खुशबू का गुलिस्तां बसा था, अलविदा के बाद वो हिस्से घर में वीरान छूट जाते हैं। चिट्ठियों के पुलिंदे में अब वो तपिश कहाँ बाकी, चिट्ठियों के पुलिंदे में अब वो तपिश कहाँ बाकी, हिजर के बाद खतों के सिलसिले टूट जाते हैं।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। बिछड़ने के बाद उनका सामान संभाले कि अपना दिल, बिछड़ने के बाद उनका सामान संभाले कि अपना दिल, कमरे में सजी चीजों से संभले दिल भी टूट जाते हैं।
1: बहुत दर्द है।
0: शुक्रिया। उनकी उंगलियों की छुहन चेहरे से हटाए नहीं हटती, उनकी उंगलियों की छुअन चेहरे से हटाए नहीं हटती, मोहब्बत में आनंद हम अक्सर तन्हा मायूस घुट जाते हैं। मोहब्बत में अक्सर हम तन्हा मायूस घुट जाते हैं।
1: अभी तो युवा हो, और कोशिश करो।
0: शुक्रिया।
2: इसलिए आनंद जी कहना चाहूंगी कि सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठा प्यार जताते हैं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठा प्यार जताते हैं, और गीत प्यार के खाते हैं, साथ कौन किसी का देता है, सब मन रखने की बातें हैं, सब दिल बहलाने की बातें हैं। आनंद जी,
0: अरे वाह,
3: क्या बात। इतना जल्दी मायूस मत होइए, दो पंक्तियां मैं आपको डेडिकेट कर देती हूँ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।
0: क्या बात,
2: बहुत खूब,
0: शुक्रिया। आप सभी का आश्वासन मैं अपने साथ रखूंगा, पर कोशिशें मैं फिर भी करता रहूंगा। तो अगली एक रचना है, इसका ऐसा है कि क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में जाते हो तो कुछ हनीमून पीरियड जिसको हम बोलते हैं, उस समय पे ऐसे एहसास होते हैं कि मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ फिर भी वो सब समझ रहे हैं। तो उससे संबंधित दो पंक्तियाँ है कि बिन लफ्ज जज्बात बयां हो जाते हैं, बिन लफ्ज जज्बात बयां हो जाते हैं, मेरी खामोशी की गूंज वो सुन लेती है। अब ये एक रचना है पुरसुकून शायर से रिश्ता।
3: पुरसुकून
0: जी। उड़ने को आसमां भी कम पड़े शायद, हर शाम कूचे में लौट जरूर आना, तेरी आरजुओं से नावाकिफ नहीं हम, मगर दरख्त तो दरख्त को इंतजार का हक है।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। मसले ताउम्र खत्म न हुए उनके, मसले ताउम्र खत्म न हुए उनके, इश्क करते तो शायद कुछ सुकून मिलता।
2: वाह,
0: शुक्रिया। महफिले सुखन बरसों से इंतजार में है, एक रोज उनकी शिरकत होगी समा बंधेगा, महफिले सुकन बरसों से इंतजार में है, एक रोज उनकी शिरकत होगी समा बंधेगा, इश्क की उम्र से गुजर चुकी अब शादी होगी, इश्क की उम्र से गुजर चुकी अब शादी होगी, उनके नसीब में खतो गुलाब का इंतजार कहाँ, मर्ज की दवा को दौलत कमाने निकले थे, कागजों की खुमारी ने दीवाना बना डाला उनको।
3: क्या खसारा है।
0: शुक्रिया। अंतिम दो पंक्तियां इस रचना की कि पुरसुकून शायर से रिश्ते की तमन्ना है क्या, पुरसुकून शायर से रिश्ते की तमन्ना है क्या, वो मर मर के जीना सीखा है, साथ दोगी।
2: निश्चित ही ऐसी आशा करते हैं कि कोई साथ देने वाली मिले आपको।
0: शुक्रिया।
4: उम्मीदों पर दुनिया का है हमें।
0: क्या बात। अब ये जब इतनी सारी मायूसी की बातें हो गई तो क्या है ना कि कई बार खुद को खुद ही आश्वासन बंधाना पड़ता है। अब आप जैसे कवि कवियत्री बार बार तो क्या है कि हमें आश्वासन बंधाने आएगा नहीं, तो उसी के लिए ये रचना है कि कागजी मायूसी से आगे। दिल फेंक मिजाज के आशिक हो, दिल फेंक मिजाज के आशिक हो, ये दिल लगी छोड़ो वफा तो करो, दिल फेंक मिजाज के आशिक हो, ये दिल लगी छोड़ो वफा तो करो, इश्क बेपनाह नसीब है तुम्हारा, किसी शख्स पर खुद को फना तो करो। हर रोज रोशनी के फव्वारे फूटते हैं, हर रोज रोशनी के फव्वारे फूटते हैं, तुम हरदम सोए रहते हो, रोशनी को भर लो आगोश में, कभी सवेरा देखो नींद से जगा तो करो।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। और बार बार उन्हीं पुरानी स्मृतियों में जाता है मन तो उसके लिए कि लौट कर उन्हीं ख्वाबों ख्यालों में बार बार कुछ पा जाओगे क्या, लौट कर उन्हीं ख्वाबों ख्यालों में बार बार कुछ पा जाओगे क्या, बस्ता छूट चुका सब बढ़ गए, हम उम्रों को भी गले लगा तो करो, आज वीरान है तो क्या शमा कल फिर रोशन होना ही है, आज वीरान है तो क्या शमा कल फिर रोशन होना ही है, क्यों रुक पड़े इस कागजी मायूसी से, पसीना बहाओ खुद को नया तो करो।
1: क्या
0: और
3: अंतिम, क्या मेहनत
0: है। शुक्रिया। अंतिम दो पंक्तियां इस रचना की कि क्या खोज

0: जाएगा, क्यों इतनी बेचैनी है आनंद, क्या खो जाएगा, क्यों इतनी बेचैनी है आनंद, जरा से आराम से गुरेज करते हो, तुम्हारे जाने से जमाना न रुका न कभी रुकेगा, तुम्हारे जाने से जमाना न रुका न कभी रुकेगा, सिकंदर के किस्से सुना तो करो।
1: जाने वाले को कौन परमानंद आ गया।
0: शुक्रिया। और अंतिम कड़ी में मेरी बहनें हैं, उनको डेडिकेट करके मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि
2: दो बहनें यहाँ भी बैठी हैं।
0: जी, दो बहनें वहां हैं, दो बहनें यहाँ हैं।

0: अंतिम कड़ी में मेरी बहनें हैं, उनको डेडिकेट करके मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि
1: दो बहनें यहाँ भी बैठी
0: हैं जी, दो बहनें वहां हैं, दो बहनें यहाँ हैं, तो सब बहनों को डेडिकेट करके मैं ये पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगा कि खैर मनाता हूँ ईश्वर की, ईश्वर का साया साथ रहता है। खैर मनाता हूँ ईश्वर की, ईश्वर का साया साथ रहता है, किसी का साथ हो ना हो कांधे पर बहन का हाथ रहता है।
2: क्या बात है।
0: रूठ कर भी लौट आना, डांट कर भी खुद चुप कराना, अपनी खुशी छोड़ मेरे गम में मुझे ढांढस बंधाना, हर राखी पर मेरी कलाई सजाना, माँ सा मुझ पर प्यार लुटाना, खुद दुखी हो पर मुझे हंसाना, गिरने पर संभाल कर मरहम लगाना, बहन इसी का नाम है, बहन इसी का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: क्या बात, बहुत बहुत, बहुत बढ़िया रचनाएं पढ़ी आनंद जी आपने।
0: बहुत शुक्रिया।
2: आकाशवाणी के सफर को बहुत अच्छे से दिखाया, उसके बाद आपने प्रेम में जो जोखिम उठाए उसको बताया, फिर कैसे प्रेम से बाहर निकलने के बाद वापस अपने आप को उठाया, इस तरीके से जो आपने रचनाएं पढ़ी, काफ़ी शानदार रचनाएं आपने पढ़ी। और अब इसी के साथ में हमारे अगले साथी अमन न्याति जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपनी कविताएं आप सभी के सामने अपने परिचय के साथ प्रस्तुत करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का कि मुझे ये पहला मौका दिया गया है अपने जज्बात, अपने ख्यालों को आप लोगों तक पहुँचाने का।
2: स्वागत है।
3: तो 90 वर्षों का ये अनुपम सफ़र यूं ही सदा महान रहे, हर दिल की धड़कन बनकर आकाशवाणी की शान रहे, सूर समाचार और संस्कृति का दीप निरंतर जलता रहे, जन जन की आवाज बनकर ये कारवा आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, मैं अमन न्याति, क्लासरूम मेरा रोज का रंगमंच है और कविता मेरे रूह की आवाज, कभी चौक से लिखता हूँ तो कभी जज्बात से। और एक शिक्षक जब कोई कविता लिखता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कुछ सिखाए ना, तो किस तरीके से आकाशवाणी में बोला गया हर एक शब्द आपके कानों तक पहुंचता है और इसके पीछे की विज्ञान क्या है, चलिए कविता के माध्यम से समझते हैं। तो कविता का शीर्षक है रेडियो का विज्ञान।
0: ये कुछ नया है, स्वागत है आपका।
3: अदृश्य रेडियो तरंगों का ध्वनि संग ताना बाना है कि अदृश्य रेडियो तरंगों का ध्वनि संग ताना बाना है, बस मॉड्यूलेशन का खेल रेडियो विज्ञान का एक फसाना है, बस मॉड्यूलेशन का खेल रेडियो विज्ञान का एक फसाना है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत बनकर जब टावर से टकराती है कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत बनकर जब टावर से टकराती है, प्रकाश चाल से चलकर वो मीलों की दूरी मिटाती है कि प्रकाश चाल से चलकर वो मीलों की दूरी मिटाती है। घर में रखा एक बक्सा जो मन की बात सुनाता है कि घर में रखा एक बक्सा जो मन की बात सुनाता है, हे रिसीवर का ही रूप रेडियो उन तरंगों को पास बुलाता है, हे रिसीवर का रूप रेडियो उन तरंगों को पास बुलाता है। उस बक्से पर लगे बटन को, उस बक्से पर लगे बटन को जब आप गोल घुमाते हो, फ्रिक्वेंसी मैचिंग करते करते मन भावन संगीत सुनाते हो, फ्रिक्वेंसी मैचिंग करते करते मन भावन संगीत सुनाते हो। तारों का कोई जाल नहीं, न इंटरनेट का झमेला है कि तारों का कोई जाल नहीं, न इंटरनेट का झमेला है, विज्ञान और कला का देखो कितना सुंदर मेला है कि विज्ञान और कला का देखो कितना सुंदर मेला है। माना रील शॉर्ट्स की होड़, माना रील और शॉर्ट्स की होड़ आज भले ही खूब है, रेडियो कल भी उजाला था, रेडियो आज भी धूप है, और रेडियो कल भी उजाला था, रेडियो आज भी धूप है।
1: बहुत सुंदर।
4: बिल्कुल, ये पेशे से शिक्षक है और इन्होंने शिक्षक अंदाज में ये कविता बोली, बहुत ही खूबसूरत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दूसरी कविता की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आपने कई बार ये सुना होगा कि जब भी आप किसी को देखते हैं या कहीं पर जब किसी से बात करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि भैया पैसा बोलता है, तो पैसा आखिर कैसे बोलता है और किस तरीके से बोलता है, चलिए आज वो सुनते हैं। तो कविता का शीर्षक है कि मैं पैसा बोल रहा हूँ। मैं हूँ समस्या की जड़ सारी, समाधान भी मेरा आभारी कि मैं हूँ समस्या की जड़ सारी, समाधान भी मेरा आभारी। मैं पिघला दूँ स्वाभिमानी को, शीश झुकवा दूँ अभिमानी को कि मैं पिघला दूँ स्वाभिमानी को, शीश झुकवा दूँ अभिमानी को। मेरा खेल बड़ा ही न्यारा है, हर इंसान को पैसा प्यारा है। मेरा खेल बड़ा ही न्यारा है, हर इंसान को पैसा प्यारा है। हो जरूरत चाहे या ख्वाहिश कोई, हो जरूरत चाहे या ख्वाहिश कोई, सभी को मैं ही तो सुलझाता हूँ। कितनों के यहाँ ईमान डोले, कितनों के यहाँ ईमान डोले, सब मैं ही तो बतलाता हूँ। अजब गजब एक पहली सा उलझा कर

0: सबको रखता हूँ कि अजब गजब एक पहेली सा उलझा कर सभी को रखता हूँ। रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ में ही तो करता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ में ही तो करता हूँ। मैं ही तो रिश्तों के हवन कुंड में घृत इश्या का धरता हूँ। मैं ही तो रिश्तों के हवन कुंड में घृत इश्या का धरता हूँ। हे माया मेरी अपार निराली कि हे माया मेरी अपार निराली उड़ने को पर दे जाता हूँ। बशर्ते खुद को भूलो ना तुम। देखिए पैसा क्या बोल रहा है कि बशर्ते खुद को भूलो ना तुम हस्ती धूमिल कर जाता हूँ। तुम पर ही ये निर्भर करता कि तुम पर ही ये निर्भर करता तुम राह कौन सी चुनते हो। तुम पर ही ये निर्भर करता तुम राह कौन सी चुनते हो। हे मेरे तो स्वरूप अनेक किस रूप में मुझे तुम बुनते हो। हे मेरे तो स्वरूप अनेक किस रूप में मुझे तुम बुनते हो। गौर करना एक बात मेरी। देखिए पैसा बोल रहा है आपको उस पे गौर करना है कि गौर करना एक बात मेरी प्रतिउत्तर तुम क्या पाते हो। मैं तुम्हें बनाता हूँ या तुम मुझे बनाते हो। और इसका जवाब आपको आपके हृदय से मिल जाएगा तो एक बार ढूंढिएगा जरूर।
1: क्या तो, बात है बहुत अच्छी रचना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ एक और कविता और कविता का शीर्षक है कि मैं अपने गाँव को शहर होने देना नहीं चाहता। जहाँ लगते सभी साथ हैं कि जहाँ लगते सभी साथ है मगर एक साथ नहीं। लाखों की भीड़ बसी है मगर कोई जज्बात नहीं। आसमान छूती मीनारे हैं सरपट दौड़ती कारें हैं। जहाँ ना खुला आंगन है ना मिट्टी से लतपत बच्चे हैं। जहाँ सिमट गई है जिंदगी कि जहाँ सिमट गई है जिंदगी आधुनिकता के जंजाल में मानव से खोई मानवता। मानव से खोई मानवता बोलती लाशें बची कंकाल में। दौड़ते हैं दिन भर मगर दौड़ते हैं दिन भर मगर पल भर कोई पास बैठता नहीं। कि दौड़ते हैं दिन भर मगर पल भर कोई पास बैठता नहीं। अकेला रोता है रात भर वो मगर किसी से कुछ कहता नहीं। मगर किसी से कुछ कहता नहीं। हाँ सही बात है। हाँ पर वहाँ छतों से पानी नहीं टपकता। हाँ वहाँ पर रात भर बिजली गुल नहीं रहती। सुख सुविधाएं सारी मुहैया है उस शहर में मगर महकती खुशबू खेतों की। मगर महकती खुशबू खेतों की मैं खोने देना नहीं चाहता। लबालब भरे मीठे पोखरों को कि लबालब भरे मीठे पोखरों को मैं खारा समंदर होने देना नहीं चाहता। इंसान है अगर गौर कीजिएगा कि इंसान है अगर तो काम आए ना इंसान के। इंसान है अगर तो काम आए ना इंसान के। मैं अपने गांव को शहर होने देना नहीं चाहता। मैं अपने गांव को शहर होने देना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत ही खूबसूरत आपने रचना बोली। और सबसे खास बात यह है कि आज के समय में हर कोई शहर की तरफ जा रहा है लेकिन आपने अपनी कविताओं के माध्यम से ये बता दिया कि गांव से हमें कितना प्यार करना चाहिए। और आज के इस दौर में जो कलयुगी समय है जहां सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कटु सत्य है जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारें या ना स्वीकारें लेकिन सत्य तो यही है कि पैसे का कितना महत्व है वो आपने बताया। बहुत ही खूबसूरत आपकी रचनाएं थी। अब अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं शुभम जैन पराग जो अपनी कविताएं इसी नाम से लिखते हैं। और सिर्फ यही नहीं आकाशवाणी नहीं राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी कई कवि सम्मेलनों में आप अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। और एक शिक्षक के रूप में तो इन्होंने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन साथ ही आकाशवाणी से भी ये कई वर्षों से जुड़े हैं और अपनी अलग अलग रचनाओं के माध्यम से जनजीवन को जागरूक करते हैं। तो इसी कड़ी में हम स्वागत करते हैं शुभम जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। तो जैसा कि आकाशवाणी के सफ़र पर आप सभी मेरे पूर्व जितने भी जो कवि साथी हैं उन सभी ने रचनाएं सुनाई हैं तो एक छोटी सी रचना मैंने भी आकाशवाणी की कहानी पर लिखी है। आकाशवाणी की एक कहानी है तो चलिए शुरू करते हैं। दादा ने सुनी पापा ने सुनी हम सब ने सुनी आकाशवाणी। दादा ने सुनी पापा ने सुनी हम सब ने सुनी आकाशवाणी। 9 दशक पुराना इतिहास है इसका। 1936 से हुई शुरू इसकी कहानी।
0: वाह
3: 9 दशक पुराना इतिहास है इसका। 1936 से शुरू हुई इसकी कहानी। नाम था इसका ऑल इंडिया रेडियो। नाम था इसका ऑल इंडिया रेडियो। रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा आकाशवाणी।
0: क्या
3: रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा आकाशवाणी। खबरें देना मनोरंजन करना और सुनाना लोगों को कहानी। खबरें देना मनोरंजन करना और सुनाना लोगों को कहानी। हम अपनी संस्कृति को जाने और अपने लोगों को जाने। हम अपनी संस्कृति को जाने और अपने लोगों को जाने। दूर दराज और देश विदेश की खबरें देती आकाशवाणी। दूर दराज और देश विदेश की खबरें देती आकाशवाणी। भोर की शुरुआत

0: समाचार से दिन में नगमे कृषि की खबरें। भोर की शुरुआत समाचार से दिन में नगमे कृषि की खबरें। स्वास्थ्य की घुट्टी देकर रोजगार की खबरों संग शाम को ये बनाती सुहानी। स्वास्थ्य की घुट्टी देकर रोजगार की खबरों संग शाम को ये बनाती सुहानी। कभी हंसाती कभी सताती, कभी हंसाती कभी सताती, कभी आँखों में दे जाती पानी। फरमाइश बताओ और सुनो सुरों को, फरमाइश बताओ और सुनो सुरों को। दिल बहलाने की ये मशीन पुरानी, दिल बहलाने की ये मशीन पुरानी।
1: क्या बात
0: है। दुख की साथी सुख की साथी, जीवन में धुन भरती इसकी वाणी। दुख की साथी सुख की साथी, जीवन में धुन भरती इसकी वाणी। हमारी साथी तुम्हारी साथी, हम सबकी प्यारी आकाशवाणी।
1: क्या बात है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी साथी तुम्हारी साथी, हम सबकी प्यारी आकाशवाणी। कितने सारे कार्यक्रम लिए आती, कभी कृषि जगत कभी सहेलियों की बाड़ी, कभी महिला जगत तो कभी योगा कराती। युवाओं के लिए है खास युववाणी, जिसमें रस्ते युवा अपनी कहानी। युवाओं के लिए है खास युववाणी, जिसमें रस्ते युवा अपनी कहानी। टेग लाइन है इसकी बहुत ही प्यारी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। हमारी साथी तुम्हारी साथी, हम सबकी प्यारी आकाशवाणी। हमारी साथी तुम्हारी साथी, हम सबकी साथी आकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली एक छोटी सी रचना है जिसका शीर्षक है भ्रम।
2: भ्रम।
0: जो कल थे वे आज नहीं है, जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। धन्यवाद। और एक मेरी रचना है जो मैंने काफी पहले लिखी थी, इसका शीर्षक है पढ़ी लिखी लव स्टोरी। सवालों के जवाब ढूंढने में उलझी उलझी सी दिखी थी। सवालों के जवाब ढूंढने में उलझी उलझी सी दिखी थी। कैसे न मानूं ये कि मेरी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी, कैसे न मानूं ये कि मेरी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी। लम्हों का हिसाब वो बखूबी करना जानती थी, लम्हों का हिसाब वो बखूबी करना जानती थी। इसलिए मेरी खुशी को वो अपनी खुशी मानती थी। इसलिए मेरी खुशी को वो अपनी खुशी मानती थी। मेरी खामोशियां पढ़ने को उसने नजरों की भाषा सीखी थी। मेरी खामोशियां पढ़ने को उसने नजरों की भाषा सीखी थी। कैसे ना मानूं ये कि मेरी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी, कैसे ना मानूं ये कि मेरी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी। उकेरने को मेरा चित्र हृदय में अपने, उकेरने को मेरा चित्र हृदय में अपने। बड़ी अदब से उसने चित्रकारी सीखी थी। प्यार में राजनीति करना उसे नहीं आती थी, प्यार में राजनीति करना उसे नहीं आती थी। इसलिए वो जताती नहीं थी पर बड़ी शिद्दत से मुझे चाहती थी। इसलिए वो जताती नहीं थी पर बड़ी शिद्दत से मुझे चाहती थी। निश्चल प्रेम और अगाध श्रद्धा मुझे उसके समर्पण में दिखी थी।
1: क्या
0: निश्चल प्रेम और अगाध श्रद्धा मुझे उसके समर्पण में दिखी थी। कैसे ना मानूं ये कि मेरी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी, कैसे ना मानूं ये कि मेरी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी।
2: बिल्कुल, आपकी लव स्टोरी पढ़ी लिखी थी और उसके साक्षी हम भी बने। ये बहुत अच्छा लगा हमें।
0: धन्यवाद।
3: PhD होल्डर लगती है आपकी लव स्टोरी।
0: हाँ बिल्कुल, इतना तो पढ़ ली है। चलिए तो अब अगली मेरी रचना का शीर्षक है तरीका।
2: तरीका।
0: जो सुकून रूट कर फिर मान जाने में है
2: जी,
0: वो रूट कर नफरत बढ़ाने में नहीं।
1: क्या बात है।
0: जो सुकून रूट कर फिर मान जाने में है, वो रूट कर नफरत बढ़ाने में नहीं। आज मिला है जो वो कल हो ना हो, आज मिला है जो वो कल हो ना हो। मजा जिंदगी जीने में है बिताने में नहीं। मजा जिंदगी जीने में है बिताने में नहीं। प्यार है तो दिखाने में हर्ज कैसा,
2: प्यार है तो दिखाने में
0: हर्ज कैसा। इससे खूबसूरत एहसास जमाने में नहीं, इससे खूबसूरत एहसास जमाने में नहीं। कद्र रिश्तों की करो अपनों की करो
2: जी,
0: कद्र रिश्तों की करो, अपनों की करो।

0: ये सब दिल से करो किसी को दिखाने,
1: दिखाने
0: में नहीं
1: के लिए
0: क्या? ये सब दिल से करो किसी को दिखाने में नहीं।
2: मोहब्बत पे कटाक्ष किया है ये सारा।
1: बिल्कुल
0: कमियां तो सब में है, कमियां तो सब में है, रिश्ते बचा कर रखो। जो बात थामे रखने में है वो छोड़ जाने में नहीं, जो बात थामे रखने में है वो छोड़ जाने में नहीं। रिश्ते और रास्ते ये हमें सिखा देते हैं, रिश्ते और रास्ते ये हमें सिखा देते हैं। अगर मोड़ आ जाए तो चलने का तरीका बदलो, अगर मोड़ आ जाए तो चलने का तरीका बदलो। मंजिल को बदलो नहीं, मंजिल को
1: बदलो
0: नहीं। जो सुकून रूट कर फिर मान जाने में है, वो रूट कर नफरत बढ़ाने में नहीं, वो रूट कर नफरत बढ़ाने में।
1: शुभम जी के कहने का तात्पर्य ये कि मंजिल को मत बदलो, नहीं तो ये प्रयास अनवरत चलते रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: डरते लड़ते थकना नहीं है।
0: बिल्कुल, हमें निरंतर बढ़ते रहना है।
2: क्या बात।
0: तो जैसा कि इसी माह में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस
1: जी
0: गया है, और सभी को अपनी माँ से बहुत ही प्यार होता है, ठीक है ना। और मैंने कहीं पढ़ा था कि माँ एक ऐसा शब्द है जिस पर अगर सारी कायनात की स्याही से भी लिखा जाए तो शायद वो स्याही भी कम पड़ जाएगी। तो मैंने अपनी माँ पर एक रचना लिखी है जिसका शीर्षक है माँ का सहारा। जब हम जहाँ में आए यहाँ कौन हमारा था, जब हम जहाँ में आए यहाँ कौन हमारा था। माँ एक तू ही तो थी जो सहारा था, माँ एक तू ही तो थी जो सहारा था। हम तो अनजान थे सब खुशियों से, हम तो अनजान थे सब खुशियों से, पर शायद तेरे लिए माँ वो पल संसार का सबसे खूबसूरत नजारा था।
2: क्या बात है।
0: जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होता है
1: माँ होती,
0: तो शायद माँ होती है। तो हम तो अनजान थे सब खुशियों से, क्योंकि उस समय तो हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन माँ वो पल संसार का तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत नजारा था। विद्यालय का वो पहला दिन तुमसे दूर जाने का डर सताया था, विद्यालय का वो पहला दिन तुमसे दूर जाने का डर सताया था। तुम्हें भी मुझे ऐसे छोड़ना कहाँ रास आया था, तुम्हें भी मुझे ऐसे छोड़ना कहाँ रास आया था। जब भी कोई आई मुसीबत और जब जब मैं हुआ तन्हा, जब भी कोई आई मुसीबत और जब जब मैं हुआ तन्हा। मेरे लबों ने सबसे पहले बस तुम्हें ही पुकारा था, मेरे लबों ने सबसे पहले बस तुम्हें ही पुकारा था। जब हम जहाँ में आए यहाँ कौन हमारा था, माँ एक तू ही तो थी जो सहारा था। जब भी गलती हुई मुझसे संसार ने मुझे दुत्कारा था, जब भी गलती हुई मुझसे संसार ने मुझे दुत्कारा था। मेरी कितनी ही गलतियों पर माँ पर्दा तूने डाला था, मेरी कितनी ही गलतियों पर माँ पर्दा तूने डाला था। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे में कभी कोई गलती नहीं देख सकती
2: और हमेशा प्रोटेक्ट भी करती है।
0: हाँ, और हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कैसे गुणगान करूं तेरा शब्दों से माँ, हर शब्द तुझी से तो पाया था। कैसे गुणगान करूं तेरा शब्दों से माँ, हर शब्द तुझी से तो पाया था। जब भी नींद ना आई और जब जब मैं घबराया था, जब भी नींद ना आई और जब जब मैं घबराया था। तेरी ममता भरी थपकियों ने मुझे निश्चिंत सुलाया था। जब हम जहाँ में आए यहाँ कौन हमारा था, माँ एक तू ही तो थी जो सहारा था, माँ एक तू ही तो थी जो सहारा था।
2: क्या क्या बात है।
0: बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक मेरी अंतिम रचना है जिसका शीर्षक है भूल, वो मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। हो जाती है कुछ भूले जाने अनजाने, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, ये खुद को बताओ चाहे तुम्हारा मन माने ना माने।
2: क्या बात।
0: हो जाती है कुछ भूल, कई सारी भूल है। अब भूल है तो भूल है, वो कोई जानबूझ के तो करता नहीं। तो हो जाती है कुछ भूले जाने अनजाने, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, ये खुद को बताओ चाहे तुम्हारा मन माने ना माने। भूल कोई चाहकर तो नहीं करता, हो जाता है कुछ गलत भी कुछ अच्छा करने के बहाने।
2: क्या
0: हो जाता है कुछ गलत भी कुछ अच्छा करने के बहाने। सभी को चाहिए वैसा ही जैसा उन्होंने सोच रखा है, सभी को चाहिए वैसा ही जैसा उन्होंने सोच रखा है। थोड़ा सा अपना मन का कर लो, वही आएंगे तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने। थोड़ा सा अपने मन का कर लो, वही आएंगे तुम्हें अपनी गलतियां बताने। पर तुम ना आना उनके बहकावे में, वही करना जो तुम्हारा मन माने। पर तुम ना आना उनके बहकावे में और वही करना जो तुम्हारा मन माने। ये जीवन तुम्हारा है, इसे अपने तरीके से जीना, क्योंकि रूठोगे जब तुम कोई आएगा नहीं मन

0: बेलाने।
1: अरे क्या,
0: क्योंकि रूठोगे जब तुम, कोई आएगा नहीं मन बेलाने। दुनिया की रीत है यहाँ कोई किसी का नहीं, दुनिया की रीत है यहाँ कोई किसी का नहीं। कुछ भी यूं ही नहीं मिलता, एक कमी मिली नहीं कि कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अपने ही आएंगे तुझे नीचा गिराने। एक कमी मिली नहीं कि कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अपने ही आएंगे तुझे नीचा गिराने। खुद के लिए जी, अपनी पसंद का कर, यही हकीकत है। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने,
2: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,
0: जिंदगी ना मिलेगी।
1: क्या बात है शुभम जी, आपने जो ये रचनाएं पढ़ी है और जो बचपन के ऊपर, बचपन में आप ले गए, तो उनसे मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है कि
0: स्वागत है।
1: वो बचपन का समा कितना निराला था, ना पाने की चाह थी, ना कुछ खोने का बहाना था। कमबख्त मैं भी इस दुनिया में कहां उलझ कर रह गया, कमबख्त मैं भी इस दुनिया में कहां उलझ कर रह गया। कोई रास्ता पता है क्या, वापस बचपन में जाना था।
0: क्या बात है, बचपन में तो सभी जाना चाहते हैं पर हम जा नहीं पाते हैं। पर यह है कि आप, अब हमारे अंदर जो बचपन की बातें हैं, जो बचपना है, अगर हम उसको जिंदा रखेंगे तो शायद हम बूढ़े होकर भी उसी बचपन में रहेंगे।
1: बिल्कुल सही,
0: बिल्कुल। तो आप सभी ने अपनी बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं, हम आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने अपनी रचनाएं आप सभी श्रोताओं को सुनाई। और मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने हमारी रचनाओं को सुना। आप सभी के इस प्यार के लिए, आकाशवाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, ये थी काव्य गोष्ठी, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे मनोज कुमार अम्बेश। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित। नमस्कार।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM बैंड 100.9 हर्ट्ज पर। यह है FM रेडियो लेक सिटी, समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
5: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा डांस

0: बार मसाज पार्लर स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है एफएम लोकल विंडो के मनोरंजक कार्यक्रम। 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fun.
1: Akashvani at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, non-stop धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल.
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा एफएम रेडियो लेक सिटी. आपका दोस्त मैं हूं आरजे विवेक, लेकर हाजिर हूं एक बेहद खास सफ़र पर. आज हम घूमेंगे राजस्थान की उस खूबसूरत धरती पर जहां झीलें हैं, पहाड़ हैं, महल हैं, इतिहास है और दिल को छू लेने वाली संस्कृति है. जी हां दोस्तों, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है उदयपुर शहर को, जिसे सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों की नगरी कहा जाता है. अरावली की गोद में बसा यह शहर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भावनाओं का शहर है. और तभी तो हमारे शहर के लिए कहा गया है, झीलों में चांद उतरे तो नज़ारा बन जाए, उदयपुर की शाम हो तो हर दिल दीवाना बन जाए. और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये पहला म्यूजिकल ट्रैक, जिसे लेकर के आया है आपके लिए आपका आरजे विवेक.

0: डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: और सुनो एक और नियम है। वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दोस्तों, उदयपुर का राजमहल और जगदीश मंदिर आज भी मेवाड़ की शान का प्रतीक है। यहाँ की सबसे खास बात है शहर और प्रकृति का अद्भुत मेल। उदयपुर को भारत का सबसे रोमांटिक शहर भी कहा जाता है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई। विदेशी पर्यटक इसे एस्टन वेनिस भी कहते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम

दोस्तों, कुछ शहर सिर्फ देखे जाते हैं और कुछ शहर महसूस किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा अपना उदयपुर, जो अरावली पर्वतमाला से घिरा है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में एक है अरावली पर्वतमाला। इसके आसपास के क्षेत्र गोगुंदा, कोटड़ा, झाड़ोल, सलुम्बर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही खुशबू है। कहते भी हैं पहाड़ों की खामोशी भी यहाँ गुनगुनाती है। उदयपुर की हर राह दिल को बहलाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, जहाँ पानी में महल दिखे समझ लीजिएगा आप उदयपुर शहर में हैं।

दोस्तों, म्यूजिक और मस्ती के साथ आप रच बस गए हैं 101.9 FM रेडियो लेक सिटी के साथ, और मैं हूं आपका आरजे विवेक। उदयपुर सिर्फ इतिहास नहीं दोस्तों, स्वाद का भी शहर है। यहाँ की दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कचौरी, मावा कचौरी और मक्खन या लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। मक्खन या लस्सी के साथ ही मिट्टी में खुशबू और हवाओं में प्यार है। उदयपुर सच में राजस्थान का श्रृंगार है।

दोस्तों, इस म्यूजिकल ट्रैक की तरह ही उदयपुर की लोक संस्कृति भी बेहद समृद्ध है। यहाँ का घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवय नृत्य, मेवाड़ी लोकगीत देश विदेश में प्रसिद्ध है। और उदयपुर में हर साल शिल्पग्राम उत्सव होता है, साथ ही गणगौर उत्सव भी देखने लायक होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
9: दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। हल्दी घाटी की माटी की महक आज भी राजस्थान के गर्व की पहचान है। जो झुक न सके वो मेवाड़ कहलाया, जिसने शौर्य लिखा वो प्रताप कहलाया।

दोस्तों, आज का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। हम फिल्म संगीत के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, लेकिन उदयपुर की खूबसूरती शब्दों में पूरी नहीं।

0: इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
1: दोस्तों, इवनिंग लोकल विंडो में अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसी के साथ FM लोकल विंडो का समय अभी यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से हम रिले करेंगे कार्यक्रम जय माला। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: ए.आर. रहमान और सुखविंदर सिंह का गाया देशभक्ति गीत सुना। संगीत तैयार किया था ए.आर. रहमान ने, बोल समीर के थे। फिल्म का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आपने सेना पर आधारित गीत सुना, गीत संगीत स्वर था कैलाश खेर का। अब हम फौजी भाइयों को सुनवा रहे हैं राधा का संगम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए निखिल विनय का संगीतबद्ध किया और फैज अनवर का लिखा गीत, आवाज चित्रा की फिल्म का नाम तुम बिन।

ने फैज अनवर का लिखा गीत सुना, आवाज दे रही थी चित्रा सिंह, फिल्म का नाम था तुम बिन। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी? नए झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके? सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए बॉबी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाजों में। बोल लिखे हैं विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: लीजिए सुनिए सड़क फिल्म में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को बोल हैं समीर के।

अभी आपने संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया सड़क फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: смертью кисло. स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। स्मृतियों के स्वर इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष इस उपलक्ष में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनकी दुनिया में रेडियो था, या यूं कहें कि रेडियो ही उनकी दुनिया थी, या उन्होंने अपनी पूरी जो दुनिया है, अपना जो पूरा समय है वो रेडियो को ही दे दिया। तो आज भी हमारे ठीक सामने एक ऐसी ही शख्सियत बैठी है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस रेडियो में काम किया और अपने आप को यूं कहें कि खपा दिया रेडियो की दुनिया में। आप हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार साहब। सर, आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं
1: जी,
2: उन सबको मैं नमन करता हूँ और बड़ों को तो मैं पांव धो करता हूँ
1: जी,
2: और दूसरों जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार और बच्चों को स्नेह ही स्नेह।
1: तो आपने तो इतने वर्षों तक काम किया है, डिजिटल युग भी आ गया है और निजी FM चैनल्स भी आ गए हैं, आकाशवाणी अभी तक प्रासंगिक बना हुआ है, मानते हैं आप?
2: हाँ,
1: तो प्रासंगिक ही रहेगा,
2: हमेशा हमेशा बना रहेगा। हमारे गायकवाड़ साहब करके एक डीजी साहब, वो हमेशा ही कहते थे आकाशवाणी कभी मरेगा नहीं बेटे, ये हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे दूसरे चैनल हो चाहे नहीं हो, उसकी आकाशवाणी की प्रभुता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस अपनी निष्ठा के साथ जुनून के साथ काम करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी
1: जी।
2: ये उनका माँ मंत्र था और ये मंत्र मैंने घुट घुट के पिया, कारण कि मेहनत करना मेरा काम था और मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत के कारण आज तक मैं यहाँ बॉम्बे जैसे छोटे से गांव में रहता था, मैं बीकानेर जैसे स्थिति में, और सूरतगढ़ तो उससे भी छोटा था
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वहां से यहाँ तक आना और फिर बच्चों का पूरा ध्यान रखना और बच्चों के ध्यान के साथ साथ उनको आगे भी बढ़ाना है। आज बच्चे विदेशों तक चले गए हमारे, क्यों चले गए? क्योंकि इस आकाशवाणी की बदौलत, आज इस आकाशवाणी की बदौलत हमारा परिवार आगे बढ़ा है और हमारा परिवार दिन दुनी रात चौगनी इसी कदर से बढ़ता रहे और साथ साथ में आकाशवाणी की जो गरिमा है वो हमेशा बरकरार रहे। इसके बरकरार रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हमें जान भी दे सकते
1: हैं। बिल्कुल, वो तो आपके कार्य बताते हैं कि आप किस हद तक आकाशवाणी से प्रेम करते हैं। आप जब आकाशवाणी की दुनिया में आए, इतने साल आपने काम किया है, कोई ऐसा लम्हा आपको याद है जब आपको आपके कार्यों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा मिली हो, या कहना चाहिए आलोचना मिली हो, या भला बुरा सुनना पड़ा हो अपने उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा या श्रोताओं के द्वारा? ऐसा कोई पल याद है आपको जो हम श्रोताओं से साझा करें?
2: खट्टे मीठे पल बहुत याद है। जब मैं राजस्थान में था और जोधपुर में मेरी पोस्टिंग थी, तो जोधपुर में चौधरी भाई करके प्रोग्राम का मेरा करेक्टर था
1: जी,
2: और चौधरी भाई के नाम से मेरे को आवाज से लोग पहचान लेते थे कि याद नहीं, अरे आवाज तो कहीं सुना भाई। मैं पूछता कहाँ सुना भाई, अरे चौधरी भाई वो तो रेडियो में आते हैं भाई, तुम चौधरी भाई कैसे हो गए, तुम तो वो तो नहीं हो। हाँ भाई नहीं हूँ भाई, माफ करना मेरे को। ऐसा कहकर मैं बात तो टाल देता, मतलब जब देखता था करेक्टर जो हमारा है कितना फेमस हो चुका है, सही बात है ना, और इसी करेक्टर के मार्फत मैं अपनी बातों को उनके सामने रख देता था कि भाई ये समस्या है, इस समस्या का ऐसा समाधान होगा और इस समस्या को अपन समाधान के रूप में लें, न कि उनको समस्याओं को समस्याओं के रूप में लें। सही बात है ना,
1: मतलब जो आपका एक कैरेक्टर था चौधरी करके, आपने उसके माध्यम से लोगों के सामने एक नई सकारात्मक बातें रखी जिंदगी से।
2: मैडम उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स किए जो कंपटीशन

0: एक प्रोग्राम थे,
1: जी
0: उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और सरकारी तंत्र से जुड़ा मैं, और शिक्षा के पद से भी जुड़ा, और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा काम किया। और इसके लिए मुझे वहाँ पर विशेष तौर से बीकानेर में तो मुझे ऐसे काम करने के कारण प्रशंसा पत्र भी दिया गया,
1: सम्मान भी मिला।
0: सम्मान भी मिला
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रशासन के द्वारा। और
1: बिल्कुल
0: ऐसे सम्मान तो मैडम हम लोगों को सबको मिलते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, सबको
1: कार्य
0: मिलते
1: का
0: हैं और
1: कार्य
0: अच्छा
1: की
0: लगता है मैडम
1: हाँ
0: हम
1: एक
0: लोग को
1: कार्य का
0: जब।
1: सम्मान है, आपके
0: हाँ
1: कार्य का सम्मान है।
0: तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथी लोग जो थे उस समय में, जैसे प्रदीप हैं वगैरह हैं, आप भी थे उस समय, आप लोग जो जुनून था आप लोगों में, आप देखो जुनून की जैसे आप यहाँ तक आ गए हैं,
1: जी
0: ये जुनून होता है काम करने का।
1: जी
0: जिसको
1: बिल्कुल
0: जुनून होगा वो आगे बढ़ेगा मैडम, जुनून नहीं होगा वो ही पड़ा रहेगा।
1: बिल्कुल सही
0: इसलिए
1: कहा आपने।
0: इसलिए आदमी को आगे बढ़ना है, और हम लोग जो मौका मिला ना मैडम, इसको सेवा करनी है, सेवा सेवा की भावना प्रथम होनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो
1: बिल्कुल।
0: सेवा करने वाले आदमी आगे बढ़ सकता है।
1: अगर मैं एक बात कहूं, मैंने चूंकि आप जैसे अधिकारियों के साथ काम किया और बहुत ऐसे अधिकारी हमें भी मिले जो जुनून की हद तक काम करते थे, डांटते भी थे और बताते भी थे कि कार्यक्रमों को कैसे किया जाता है, और उससे बहुत कुछ सीखा, उनकी डांट से सबक सीखा कि किस तरह से कार्यक्रमों में गलती नहीं होनी चाहिए। सर आपसे इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली है, और इस बातचीत के साथ साथ आपकी पसंद का गीत हम जानना चाहते हैं।
0: जया भादुड़ी जी और शायद अमिताभ बच्चन जी दोनों फिल्म के अंदर काम कर रहे थे,
1: मिली
0: मिली मिली हाँ शायद वही फिल्म होगी,
1: जी
0: और उसके अंदर जब कैंसर हो जाता है उनको, जया भादुड़ी को, और अंत के अंदर जो वो गाना एक आता है, मैंने कहा फूलों
1: फूलों
0: से खिलखिला
1: से हंसो तो वो खिलखिला के
0: रहा,
1: हंस
0: अरे
1: पड़े।
0: जिंदगी में हंसते रहो मैं तो यही कहता हूँ,
1: जी
0: बी हैप्पी इन योर लाइफ।
1: जी बिल्कुल। आई सुनते हैं ये गीत।

0: मैं
1: जी।
0: यहाँ पर एक स्वामी जी की बात अक्सर मेरे को याद आती है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की। वो अपने उनके जो प्रवचन होते थे बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, लाखों लोग आते थे, लाखों लोग। और मैडम आपके सुनकर आपको खुशी होगी और सब भाइयों को भी खुशी होगी इस बात की कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे किसी को भी।
1: जी।
0: और इंटरव्यू नहीं देने का कारण ये था कि सारा व्यक्तिगत अपने नाम से सब लोग प्रोपेगंडा करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा उनसे निवेदन किया जाके, मैं स्वामी जी महाराज एक चीज बताइए, आपकी अच्छी बात जो गीता की है, अब कर्म निवादी का रास्ते तो हम सभी जानते हैं कि लटर लटर शब्द हो गया हमारे लिए, परंतु इसके गूढ़ अर्थ क्या हुआ? ये गूढ़ अर्थ जो आपने बताया आज लाखों लोगों के बीच में, वो गूढ़ अर्थ अगर किसी पंगु जो पांव से चल नहीं पा रहा है और जो यहाँ आपके पंडाल तक नहीं आ पा रहा है और वो घर पे सुन ले तो क्या हर्ज है आपको? नुकसान है कोई? नहीं बेटा कोई नुकसान नहीं। जल्दी जल्दी तो अपना इक्विपमेंट लेके रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, और पहले सबसे पहले रिकॉर्डिंग मेरी शुरू किया हूँ मैं।
1: जी।
0: आप बीकानेर के अंदर उदय राम सर दौरे की बात बता रहा हूँ ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उस समय

0: अपना सीनियर अनाउंसर उदय प्रमोद शर्मा जी साथ में थे। हाँ
1: प्रमोद शर्मा जी।
0: वो साथ में थे, वो आज भी कहते हैं कि मैंने आपको वो इंटरव्यू लेते सुना है और आपकी बात तो बड़ी प्रभु, बस ऐसा कहते थे। मैंने कहा नहीं, मेरी कुछ नहीं है, मैंने तो सीखा है आप लोगों से, और मैं हमेशा मैडम हर एक से सीखता हूँ, यहाँ
1: बिल्कुल
0: तक कि गार्ड होता है जो अपना गेट पे रहते थे ना, उनसे ही बातचीत करके सीखता था
1: जी
0: मैं।
1: जी जी
0: और सीखने में क्या हर्ज
1: ये
0: है?
1: आपका बड़प्पन रहा, ये
0: नहीं नहीं
1: आपकी
0: मैडम,
1: महानता
0: बड़प्पन की
1: रही
0: कोई
1: कि नहीं।
0: बात नहीं है,
1: सरल
0: मैंने
1: हृदय जो इंसान है वो कभी अपने पद को नहीं लेकर रहता, सभी की इज्जत करने के साथ ही वो आगे बढ़ता है और इसी तरह से उसको सफलता भी मिलती है।
0: ऐसी
1: तो
0: बात है।
1: परमार साहब, हम अब चलते चलाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं कि आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, अपनी सेवाओं से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हमने देखे हैं आकाशवाणी की दुनिया में, जैसे कि डिजिटल रेडियो आ गया है, न्यूज ऑन AIR ऐप आ गया है जहां से पूरे विदेशों में, गांवों में हम रेडियो को सुन सकते हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब की उपस्थिति हो गई है, FM के साथ साथ पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं। ये जो इतने सारे बदलाव अब रेडियो के साथ साथ हम देख रहे हैं, इनके साथ में परिवर्तन, आप इसको कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जब मैं एक बार टाटा हॉस्पिटल गया, तो टाटा हॉस्पिटल में गुप्ता साहब थे, उनसे मिलने के लिए गया, तो उनकी स्टेनो के पास बैठा। रेडियो कौन सुनता बनवा साहब आजकल? अच्छा एक बात सुनो, आपको रेडियो के ऐप मालूम है कुछ? अरे आप न्यूज़ कब कब सुन सकते हैं मालूम है आपको? मैं कहा अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते थे मालूम है, कि अगर आप जरा सा भी न्यूज़ एक सुन लें बराबर ध्यान से, तो मेरे जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को तुम पास कर सकते हो भाई, क्योंकि जीके की जो बातें हैं, जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, वो पूरी की पूरी समाचारों में आती है। और हमारा समाचार जगत का मैंने एक उसको ऐप दिया और उसके ऐप उसे डाउनलोड किया और मैंने कहा जैसे सुनिए आप, सुना है उसको मैंने, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था। यार आप बुरे इसलिए तो करते हैं हमारे लोगों की कि भाई मुझे मालूम नहीं था। उस ऐप के अंदर कोई भी न्यूज़ को कभी भी सुन सकते हैं, कल की न्यूज़ को आज सुन सकते हैं, सवेरे की न्यूज़ को एक घंटे बाद सुन सकते हैं। आप बताइए इससे बड़ा और किस चैनल के अंदर है मुझे बताइए, कोई भी चैनल ऐसा नहीं दिखता
1: जी, और
0: मेरे को।
1: 24 घंटे समाचार चलते
0: हाँ,
1: हैं, आप किसी विविध भाषाओं में आप
0: और
1: सुन
0: मैडम
1: सकते
0: इसके
1: हैं।
0: साथ साथ में मैं बता रहा हूँ ना, कि जिस मुख्य समाचार को आप दोबारा सुनना चाहते हैं वो आप नहीं सुन सकते कहीं पे भी, तो हमारे यहाँ पे वो दोबारा सुन सकते हैं आप, वो उस ऐप के अंदर पूरी चीजें हैं। तो ये ऐप की बातें हैं, डिजिटल की बातें हैं, तो ये सब बातें तभी संभव होगी जबकि हम लोग उसमें इंटरेस्ट लें। और आप लोग जो भी आज काम कर रहे डिजिटल सेवा के तहत, वो लोगों को बताएं, भरपूर बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं, इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, और इस ऐप्स को हम इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं और आप इनको सुने हैं,
1: जी
0: और बड़े बड़े अधिकारी बने, और बड़े बड़े अधिकारी बन के देश की सेवा करें। बस मेरा एक ही एक निवेदन है सबसे।
1: जी
0: एक बच्चा हमारे फैमिली का, जैसे एक हमारे कालूराम जी थे शायद बीकानेर के ना, उनका बच्चा जो IAS बना ना, इतनी खुशी हुई मुझको, इतनी खुशी हुई कि आज हमारे एक ड्यूटी ऑफिसर के और बाद में अधिकारी भी बन गए, है ना।
1: डियर मीणा जी के।
0: हाँ तो अधिकारी भी बन गए, तो अधिकारी बनने के बाद में वो चीजें मुझे मालूम पड़ी, बहुत अच्छा लगा मेरे को,
1: जी
0: बहुत अच्छा
1: जी
0: लगा। हमारे परिवार के जो बच्चे आगे पढ़े आगे गए, तो वो किस कारण से गए? वो इस आकाशवाणी की बदौलत गए। मैं आपसे सही कहता हूँ कि आकाशवाणी के माध्यम से जो चीजें हम लोगों ने सीखी वो हमारे को जानते थे, कि जिनको पापा को जो जुनून है ना, पागलपन से बड़ा जुनून है,
1: जी बिल्कुल,
0: ये बात
1: और
0: है।
1: वही जुनून आज आपको हमारे सामने ले
0: अरे
1: आया। आज विविध
0: मैडम
1: भारती के स्टूडियो में आप आए, आपने अपनी अनमोल बातें हमारे साथ साझा की और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं
0: अरे
1: परमार साहब।
0: मैडम, मैं आपका और सुनने वाले सभी साथियों का बहुत हृदय से नमन करता हूँ उन सबको, और अभिनंदन करता हूँ, और ये हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए हमसे,
1: जी
0: आपको नित नई बातें आपको मिलेगी, क्या खेती में, क्या आप समाचारों में, और क्या अपने जीवन में, उन बातों को उतार लीजिए, आपका जीवन ऐसा निर्मल बन जाएगा,
1: जी
0: घमंड आपके पास में नहीं रहेगा, मैं आपको
1: जी
0: बताता हूँ। और बिना घमंड का आदमी कितना बड़ा होता है आपको
1: जी
0: मालूम ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और दोस्तों, स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में थे सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय लवेश परमार साहब। हमने उनसे बातचीत की आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में, और बस आज इतना ही। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें अब इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह।

0: नेकी। अब आज का स्मृतियों के स्वर कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: स्मृतियों के स्वर।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का पहला भाग सुनवा रहे हैं। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: विक्रम,
1: ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूं, आज शाम को तो आ रहे हो ना?
0: कहाँ?
1: क्यों भाई, आज कमला के यहाँ?
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इनविटेशन आया नहीं। व्हाट्स द ओकेजन?
1: अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया, काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा रहेगा। 6:30 बजे के बाद किसी वक्त भी।
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इनविटेशन के बिना जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसी?
1: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक में कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं, इनविटेशन की ऐसी कोई बात नहीं। यूं भी कमला से मिले कितनी देर हो गई है मुझे, कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे, हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना, 6 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस में ही बैठा हूँ।
1: लेकिन वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है, वहाँ भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे, हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, फिर जाने उनके साथ कितनी देर लग जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो वक्त मिले तो आ जाना।
0: भाई मुश्किल ही है, फिर भी कोशिश करूंगा, मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहना।
1: नहीं नहीं,
0: थैंक्स फॉर कॉलिंग,
1: बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या लिखा था?
2: कॉपी ऑफ विच इज
0: बीइंग एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एटसेट्रा एटसेट्रा।
2: नेक्स्ट सर?
0: नहीं बस, बाकी ये खत कल सुबह आकर करेंगे। थैंक यू, बस जाकर इनको जल्द से टाइप कर लो, मुझे जाना है।
2: यस सर, इन ए मिनट।
0: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पर्सनल खत तो नहीं आया?
2: नो सर, डाक तो मैंने सब आपको दे दी थी। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, शायद मेरे
0: के नहीं नहीं नहीं होगा, मैं कोई खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो देख लो शाम की डाक में शायद।
2: यस सर।
0: विक्रम? यस सर, जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ जी हाँ, आई शेल एक्सप्लेन टू हिम सर। यस सर, वेरी वेल सर।
3: सर
0: कागज और बैग मेरी गाड़ी में रख दो।
3: यस सर।
2: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है।
0: ओह इट्स ऑल राइट, खत टाइप हो गया?
2: यस सर।
0: ये लो, बाकी खत ऐसे ही यहीं छोड़ दो, सुबह डिक्टेट करवा दूंगा।
2: राइट सर।
0: राइट
2: सर। सर आप अपना पेन भूल गए थे।
0: ओह थैंक यू, मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
2: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है।
0: अच्छी बात है।
2: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है भाई। अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है। तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है। तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।

0: विक्रम, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आन पहुँचे?
1: क्यों कमला, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था क्या?
0: लेकिन मेरा आज यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं।
1: तो फिर तुम यहाँ कैसे आई?
0: कॉलेज से घर पहुँची तो बहुत सोना सोना सा लगा, सोचा एक आध रिश्ते तैयार कर लूँ। कॉफी निकाल कर बैठी तो अचानक याद आया कल विनीता का बर्थडे है। तुम जानो ये मॉडर्न लड़कियां बर्थडे पर प्रेजेंट नहीं दिया जाए तो अनकल्चर की डिग्री दे डालती।
1: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
0: झूमने निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के लिए तो पूछ लो।
1: हाँ चलो, कहाँ चली?
0: सुना है ग्रीन लाइट में कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुफ्त मिलता है।
1: जी नहीं, म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेते हैं।
0: बड़े कंजूस होते जा रहे हो। हाँ भाई, मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना। अच्छा चलो, कॉफी के पैसे अपने अपने।
1: तुम्हें डायलॉग सुनने का बहुत शौक है क्या? तुम चाहती हो मैं रोज रोज दिल पे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
0: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर चलेंगे ले?
1: चलो ना, लेकिन पहले अपना प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी।
0: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया।
1: पैसे कम पड़ गए होंगे।
0: पैसे कम पड़ गए होंगे, आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है।
1: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा।
0: तुम्हें शर्म नहीं आएगी?
1: बिल्कुल नहीं, तुमसे भला मुझे क्या शर्म आएगी?
0: मुझसे नहीं, वेटर से तो आएगी।
1: वहाँ तो बिल मैं ही पे करूंगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा दे।
0: बड़े ठीक।
1: देख लो, तुम कॉलेज से सीधी घर चली गई, ये भी ना सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा। फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया?
0: जी हाँ, पूरे 10 मिनट गेट पर इंतजार किया था जाने से पहले।
1: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
0: कभी कभी ऐसा लगता है जैसे 10 बरस बीत गए हो। फिर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुंचकर सुना सुना क्यों लग रहा था? इतनी सटल बातें अगर तुम समझ सकते होते तो अपना बेड़ा न पार सकता। चलो हमारे
1: सॉरी कमला, आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था, लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ।
0: घर गए थे?
1: ना ना ना ना, मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी, बल्कि जरूर कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती हुई मिलोगी।
0: दिल ना हुआ, रडार हो गया।
1: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है। देख लो, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कदमों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं।
0: सुनो, ये आजकल के मॉडर्न राइटर्स ने कोई नई तरह के डायलॉग नहीं लिखे?
1: खुद ही तुम कहती हो कि मैं
0: अब चलकर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है। माँ ने कहा था अंधेरा होने से पहले घर लौट।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन अम्माओं को अपनी बेटियों की इतनी फिक्र क्यों खाए रहती है। अगर बाहर से लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
0: तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा रहता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार फूल जाता है। फिर माँ बेचारी क्या करे, बेटी तो जानो उनके लिए पराया धन है, जिसे उसके मालिक के हवाले किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता।
1: तुम किसकी अमानत हो?
0: तुम्हें नहीं मालूम?
1: तुम बता दो।
0: मुझे भी नहीं मालूम।
1: ये कैसे हो सकता है?
0: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कहा है तुम्हारा ग्रीन लाइट?
1: वो रहा।
0: चलो चलकर कॉफी पिए।
1: तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
0: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
1: तुम्हारी मर्जी।
0: सुनो, इनके यहाँ वो गाना है।
1: कौन सा?
0: छोड़ो, तुम्हें गाना सुनकर भी क्या समझ आएगी?
1: बस छोड़ गई मैदान।
0: क्या मतलब?
1: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई?
0: Shut up.
2: गुड इवनिंग अंकल।
3: ओ गुड इवनिंग विक्रम।
2: हेलो आंटी।
4: अच्छे हो विक्की?
2: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी।
3: अरे भाई, ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
4: किवी बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो, वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
2: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ। अरे कहाँ है सब लोग?
4: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ, मैं चलूँ।
2: नहीं आंटी।

0: ना बैठे रहिए, आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
1: He is a smart boy.
2: बहुत, देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
1: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
2: हूँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
1: मैंने गौर नहीं किया।
2: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
1: देख रहा हूँ।
2: कीवी से लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनिएगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवान वो अपने थी, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।

चित्रलोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की आवाजों में वन नाइट स्टैंड फिल्म के गाने से। ये है फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड। संगीत तैयार किया है मीट ब्रॉस ने, बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए सैयद कादरी का लिखा गीत, प्रीतम का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज है केके की।

अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति को खामोशी द म्यूजिकल में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आजा नचले फिल्म से है। आवाज दे रहे हैं राहत फतेह अली खां, संगीत तैयार किया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप सैनी के।

पेशकश आजा नचले फिल्म से है। आवाज दे रहे हैं राहत फतेह अली खां, संगीत तैयार किया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप सैनी के।

0: और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र

0: गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
4: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
4: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सा

0: सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

अपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निखरे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चार फिल्मों में संगीत देने का

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

कब तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में। सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ। अब इजाजत दीजिए।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

श्रोता विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation